सुप्रभात एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे जैविक कीटनाशी का प्रयोग विधि, तैयारी करने की विधि और इससे लाभ।

किसान भाइयों जोहार। खेती की बातें के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे जैविक खाद बनाने की विधि और इससे होने वाले लाभ के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां किसानों की मेहनत से ही अन्न का कटोरा भरा रहता है, परंतु आज के समय में रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, जिससे फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जैविक खाद किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। जैविक खाद प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली खाद है जो पौधों और जंतुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से बनती है। इसमें किसी भी तरह के रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद को हम जैविक खाद कह सकते हैं। पशुओं के गोबर से तैयार होने वाली गोबर की खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कंपोस्ट खाद को रसोई और बगीचे के अपशिष्ट पदार्थों, सूखी पत्तियों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। केंचुओं की मदद से तैयार होने वाली वर्मी कंपोस्ट खाद पोषक तत्वों के साथ साथ मिट्टी को हवादार बनाने में भी मदद करती है। हरी फसलों को मिट्टी में मिलाकर बनाई जाती है हरी खाद, जो जमीन में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाती है और नाइट्रोजन का संधारण करती है। कंपोस्ट बनाने के लिए रसोई और बगीचे के अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में इकट्ठा करके सड़ा सकते हैं। हवा और नमी का सही संतुलन बनाए रखने से कुछ समय में खाद बनकर तैयार हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुओं की मदद से खाद बनाने के लिए उन्हें एक डिब्बे में रखें और उसमें रसोई के अपशिष्ट डालें। केंचुए इन अपशिष्टों को खाकर खाद बना देंगे। आप चाहें तो खेत या बगीचे के एक कोने में 3x2x1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई का गड्ढा बनाएं। गड्ढे में सबसे नीचे सूखी पत्तियां और फसलों के अवशेष डालें। इसके ऊपर रसोई के कचरे और हरी पत्तियों की परत बनाएं। लगभग 4 किलो गोबर को 100 लीटर पानी में घोलकर गड्ढे में डालें। यह मिश्रण सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाता है। कचरे को सड़ने के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखें और गड्ढे को मिट्टी की पतली परत या बोरी से ढक दें। लगभग 60 से 90 दिनों में कचरा पूरी तरह से सड़कर काले भुरभुरे रंग की उत्तम खाद में बदल जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को जैविक खाद बनाने की जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सरकार भी जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनके तहत किसानों को जैविक खाद सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाती है। जैविक खाद से हमें कई तरह के लाभ होते हैं। यह खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और पोषक तत्व लंबे समय तक टिके रहते हैं। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी स्वस्थ बनती है, जिसमें पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अधिक उपज देते हैं। जैविक खाद मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है, जो पौधों को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। रासायनिक खादों के विपरीत जैविक खाद पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस खाद से उगाए गए फल और सब्जियां अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। जैविक खाद का प्रयोग हमें बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। जैविक खाद को मिट्टी में मिलाकर पौधों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचाए जा सकते हैं। जैविक खाद को पौधों के चारों ओर छिड़क कर भी मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस खाद को पानी में घोलकर पौधों को भी दिया जा सकता है। यह कहना उचित होगा कि जैविक खाद किसानों के लिए एक वरदान है। यह न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है और फसल उत्पादन में वृद्धि करती है, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में मदद करती है। जैविक खाद का उपयोग करके किसान अपनी खेती को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बना सकते हैं। खेती की बातें में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। जोहार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सबसे पहले ये देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। अब आइए सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं सोनू निगम और अनवर जाहिद नजान के स्वरों में।

आज के कार्यक्रम वंदना में श्रोताओं, आपने सुना सोनू निगम और अनवर जाहिद नाजान के आवाजों में भक्ति गीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। 7:20 का समय होगा लोकगीतों का और 7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 पर स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण होता है। सुबह 8 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 8:45 पर हम आपके साथ होंगे फिल्म संगीत लेकर। सुबह 9 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 9:05 पर श्रोताओं कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनेंगे एक ही गायक को। 9:30 का हमारा समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11 और दोपहर 12 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 11:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर लेकर हम आपके साथ होंगे और दोपहर 12:05 का समय होगा भावगीत का। 12:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत। दोपहर के 1 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2 मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर श्रोताओं आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में आशा भोसले और सुजान खान के गाए गीत। 3:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संध्या 4 एवं 5 समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन सकते हैं। 4:02 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर आकाशवाणी दिल्ली से। 5:02 का समय होता है युवा साथियों का, आप सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर कल कारखाने कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संध्या 6 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर श्रोताओं आप सुनते हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। 6:30 का समय होता है कृषि जगत का और संध्या 7 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। यहीं से आप सुनेंगे 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का और 7:45 पर आज के दिन आप सुनते हैं खेल कार्यक्रम। रात्रि 8 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाया जाएगा। यहीं से आप सुनेंगे रात्रि 9 न्यूज एट नाइट, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात्रि 10 फिल्म संगीत लेकर हम आपके साथ होंगे। 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं शास्त्रीय संगीत का। रात्रि 11 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम।
3: आप और हम, आप और हम।
4: बढ़ता हुआ तापमान जीवन को असामान्य बना रहा है। तेज गर्मी की वजह से मनुष्य ही नहीं वरन पशु पक्षी भी झुलसे जा रहे हैं। पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है, लेकिन इस विकट परिस्थिति के बावजूद श्रोता हमारे अपने रेडियो सेट को ऑन करना नहीं भूलते हैं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को हमारे कार्यक्रम आप और हम में हमारे साथ होते हैं। इतनी शिद्दत से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ और आपके पत्रों और मेल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हाजिर हैं हमारे स्टूडियो में कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय। राय सर, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार
4: सर। जैसा कि बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए हमने उसी आधार पर कुछ पत्र और मेल अपने कार्यक्रम में आज शामिल किए हुए हैं।
5: अच्छा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब सामयिक है या समीचीन?
4: जी हाँ, तो कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: सबसे पहले सरिता कालिंदे जी का ये मेल आया हुआ है स्टेशन रोड जमशेदपुर से।
5: अच्छा अच्छा, क्या लिखती हैं?
4: सरिता जी लिखती हैं, नमस्ते।
5: नमस्कार सरिता बहन को हमारी ओर से।
4: आगे इन्होंने जिक्र किया है, रेडियो सुनना मेरी हॉबी है और मैं प्रतिदिन रेडियो का कार्यक्रम अवश्य ही सुनती हूँ। बहनों का कार्यक्रम कल्याणी और अंगना मुझे बेहद भाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कहना है कि बढ़ती गर्मी को नजरअंदाज किए बिना महिलाएं अपना और अपने पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखें, चाहे बात खाने पीने की हो या फिर बाहर निकलने पर एहतियात बरतने की। भोजन में जलयुक्त खाद्य पदार्थ का समावेश किया जाना अति आवश्यक है और साथ ही गर्मी में खाने के साथ हेल्दी पेय पदार्थ का लेना भी शरीर के लिए प्रभावकारी होता है। इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों को अंगना और कल्याणी में शामिल करें तो समस्या कभी आएगी ही नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत बहुत धन्यवाद बहन सरिता कालिंदे जी को कि आपने लिखा है कि आप रेडियो सुनना आपकी हॉबी है, मतलब आपकी अभिरुचि में रेडियो सुनना सम्मिलित है। जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और वाकई जो निमिषा जी, अगर रेडियो सुनना को अगर एक हॉबी माना जाए, अभिरुचि माना जाए, तो इसके माध्यम से बहुत ही सुंदर हम लोग अभिरुचि इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सूचना और मनोरंजन दोनों का समावेश होता है और समय समय पर कुछ जो है मोटिवेशनल, कुछ शिक्षण ये सब भी प्राप्त होता है। तो हमारी बहन ने जो लिखा है वास्तव में इनको जो महिलाओं का कार्यक्रम है अंगना और जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है कल्याणी, वो इनको बहुत ही पसंद है। तो ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने जो बात कही है निमिषा जी, वो यही है कि अभी का जो मौसम है काफी जो है तपिश है, गर्मी अपने चरम पर है। तो जो सामान्य जो हम लोग कार्यक्रमों में और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि अपना ध्यान रखें, लू से और गर्मी से अपना बचाव करें। और उसके लिए इन्होंने भी जो बहन ने लिखा है उस बात को फिर से हम लोग दोहराना चाहेंगे कि बिना काम के अगर आप जो है एहतियात बरतें, अवॉइड करें दिन के 12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक निकलने, अगर बहुत आवश्यक न हो तो, और अगर निकलें तो जो ढीले ढाले कपड़े पहने, जल का सेवन करते रहें, माथा को ढकें, इस तरह के जो इस्तेमाल है। और हम लोग और भी अभी हर एक जो हमारे श्रोता कार्यक्रम है सब में हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि इससे संबंधित विशेषज्ञों का, डॉक्टरों की बातचीत को सुनाया जाए अथवा इस तरह की चर्चाएं तो जरूर रह रही हैं। आपको केवल जो आपने लिखा है कि अंगना और कल्याणी में नहीं, अपितु मैंने जैसा कहा कि हम लोग हर एक कार्यक्रमों में इसको सम्मिलित कर रहे हैं और अभी करेंगे जब तक मौसम का इस तरह का मिजाज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी को।
4: सरिता कालिंदे जी के इस मेल के बाद अब बारी आती है एक चिट्ठी की, और ये चिट्ठी आई हुई है सोनारी से सोनाक्षी प्रिया जी का।
5: अच्छा, क्या लिखती हैं सोनाक्षी जी?
4: सोनाक्षी प्रिया जी लिखती हैं, कार्यक्रम आप और हम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पत्र और हमारे सुझाव पर चर्चा होती है जिसे सुनकर हमें बेहद खुशी होती है। और कई बार जब सुझाव को कार्यान्वित किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अनुसार कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि बुजुर्गों का कार्यक्रम हमारे अपने जैसे हमारे लिए ही प्रसारित हो रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे जीवन से संबंधित कई बातें जो मिल जाती हैं। और हाँ, गांधी चर्चा भी इन दिनों नए रूप में नए अंदाज में काफी अच्छा लग रहा है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सोनाक्षी प्रिया जी को। वास्तव में आपने जो आप और हम की भी चर्चा कर दी
4: जी हाँ।
5: और साथ ही साथ जो है इस कार्यक्रम में जो आपने लिखा है कि पत्र और सुझाव पर जो चर्चा होती है, तो वाकई हमारे लिए वो एक आईना की तरह है
4: जी हाँ।
5: कि हम लोग को अपने कार्यक्रम बैठक में इस बात के लिए हमें बहुत ही के चलते अभी प्रेरणा मिलती है, और इस तरह का सुझाव सामने आने से हम क्या होता है कि सकारात्मक बदलाव, या जैसा कि निमिषा जी हम लोग बार बार भी अपने श्रोताओं से आग्रह करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप अपने समालोचनात्मक विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या और अच्छा होना चाहिए था। इस तरह के विचार से कार्यक्रमों में बहुत ही उत्कृष्टता आती है। तो आप जो है और स्वयं जो है आप लग रहा है कि हमारी जो वरिष्ठ नागरिक हैं समाज की, तो आपको स्वाभाविक रूप से हमारे अपने अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे जो समाज के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं जो अपनी द्वितीय पारी में आज हैं, और लेकिन जो अपने जीवन को काफी प्रोडक्टिव रखे हुए हैं, क्रियाशील रखे हुए हैं, वैसे शख्सियतों से बातचीत होती है, या हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी, मनोरंजन संबंधी कई आयामों पर चर्चा होती है। तो आपको अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है इस कार्यक्रम से जो हमारी जुड़ी हुई है प्रस्तुतकर्ता शिखा खौरी, और आगे जो आपने लिखा है गांधी चर्चा, ये भी आजकल जो कि गांधी जी के विचार बहुत ही प्रासंगिक है आज भी, तो उनके विचारों से हमें अवगत होना है, श्रोताओं को भी उससे अभी प्रेरणा मिलनी चाहिए और जिससे और प्रगति हो। ये सारी बातें जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये जो हमारा जो बदलाव है, अच्छापन के लिए जो बदलाव है, वो अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से हमारे अन्य श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा। आपकी इन अच्छी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सोनाक्षी प्रिया जी के इस पत्र के बाद अब बारी आती है एक और मेल की। ये मेल आया हुआ है अभिजीत आनंद जी का गोलमुरी जमशेदपुर से।
5: अच्छा, क्या लिखते हैं अभिजीत जी?
4: लिखते हैं, आप सबको मेरा नमस्कार।
5: अभिजीत आनंद जी, आपको भी हमारी ओर से नमस्कार।
4: आगे इन्होंने जिक्र किया है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि कार्यक्रम आप और हम में मेरा पहले भी मेल शामिल हुआ था। हमारा पर्यावरण कार्यक्रम की प्रस्तुति तो बेहद सराहनीय होती है, लेकिन आज भी लोग पर्यावरण को सुरक्षित रख पाने में असक्षम है। अब देखिए ना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आने ही वाला है और इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं और पौधे लगाते हैं, लेकिन उन पौधों को अंजाम तक ले जाना मुश्किल होता है क्योंकि पौधा लगाने के बाद लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, उनके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती है, पौधों की देखभाल नहीं होने की वजह से वे अपना दम तोड़ देते हैं। अतः मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से तमाम भाइयों एवं बंधुओं से करबद्ध आग्रह करना चाहता हूं कि लोग न केवल वृक्षारोपण करें बल्कि उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी कम से कम 6 महीने तक अवश्य लें। इसके बाद ही यह पौधा पेड़ बन जाएगा और वही आपका संरक्षण करेगा। मेरा यह संदेश लोगों तक जरूर पहुंचाएं, इसके लिए महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: महोदय अभिजीत आनंद जी, आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो लिखा है कि आप कार्यक्रम में पहले भी आपका विचार मेल सम्मिलित हो चुका है, तो निश्चित रूप से आप हमारे काफी नियमित और सुधी श्रोता हैं, ये जानकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ आपने पर्यावरण की जो चर्चा की है वाकई बहुत ही सराहनीय है आपके विचार। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है, हम लोग भी कार्यक्रम कई प्रकार के विचारों से संबंधित करेंगे, विशेषज्ञों की बातें रहेंगी, आम जनों से बातचीत रहेगी। दूसरी चीज जो आपने लिखी है कि आपका निश्चित रूप से निमिषा जी इनका जो इस पत्र का विचारों का ध्येय है वो ये है कि जो रस्म अदायगी जो हम लोग करते हैं पर्यावरण दिवस पर, वो ना होकर वो सिंसियर हो, काफी संजीदगी पूर्ण हो। जैसे पेड़ ही लगाया जाए तो पेड़ लगा के लौट जाने के बाद फिर वो पेड़ पुष्पित पल्लवित नहीं ठीक से हो पाता है, प्रॉपर रख रखाव के अभाव में उसके चारों तरफ घेरा होना चाहिए ताकि उसको कोई जानवर न खा जाए, उसको बीच बीच में पानी भी देना है। तो इसीलिए ऐसे जगह पे लगाया जाए जहाँ वो सुरक्षित रहे, संवर्धित होते रहें, और अगर कोई ओपन जगह पे लगा रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखा जाए कि कैसे वो जो सैपलिंग है, जो पादप है, वो एक ठीक ठाक पौधे का रूप लेके ग्रो कर जाए, प्रगति कर जाए, और तब वो ठीक ठाक हो जाए। तो उसको ध्यान पूर्वक कोई संस्था अगर करवा रहा है तो अभिजीत आनंद जी का जो विचार है वो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको फिर से रेखांकित करते हैं कि केवल पौधा लगाना भर ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसको आगे वो सैपलिंग जब तक ग्रो नहीं करे उसका ध्यान रखें। और बाकी आम जनों से भी हम सभी नागरिकों का महाकर्तव्य है कि पर्यावरण के सभी आयामों के प्रति हम चिंतित रहें। और इस साल का पर्यावरण भी जो है, जो थीम है वो क्लाइमेट चेंज पर ही आधारित है, तो हम पर्यावरण अनुकूल बातों को अपनाएं और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिजीत आनंद जी, आप हमारे कार्यक्रमों को यूं ही सुनते रहें और बीच बीच में अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद।
4: अभिजीत आनंद जी के इस मेल के साथ ही हमें कार्यक्रम से विराम लेना होगा, लेकिन जाने से पहले हम श्रोताओं को अब कार्यक्रम का पता बता देना चाहते हैं। कार्यक्रम का पता है, अगर आप चिट्ठी लिखते हैं तो हमारा पता नोट कर लें, कार्यक्रम आप और हम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जमशेदपुर, पिन है 831013। और अगर आप ईमेल करते हैं तो हमारा मेल आईडी है airjsrcbs@gmail.com। पत्र लिखें, मेल करें। फिलहाल मुझे और राय सर को कार्यक्रम आप और हमसे अनुमति दें। नमस्कार।
3: आप और हम, आप और हम,
0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी गीत शंभू राम और साथियों से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शंभूराम और साथियों का गाया भोजपुरी गीत। इसी के साथ आज का हमारा लोक गीतों का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे आधुनिक गान चित्रा सिंह, जगजीत सिंह और रूना लैला सिंह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आधुनिक गान जगजीत सिंह की आवाज़ में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरांजलि। अब आइए सुनवाते हैं रूना लैला को।

चित्रा सिंह के गाए इस आधुनिक गान के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुरांजलि कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता प्रसव पूर्व डॉक्टरी जांच। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर निशा यादव, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, आज हमारे देश में कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मौत प्रसव के दौरान हो जाती है। प्रसव के पूर्व क्या क्या डॉक्टरी जांच की जरूरत होती है, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा यादव। डॉक्टर साहिबा, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहिबा, प्रसव के पूर्व क्या क्या डॉक्टरी जांच जो आमतौर पर होता है जरूरी हो जाता है?
1: प्रसव के दौरान होने वाली जांच को पहले हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच होना बहुत ही जरूरी है
0: जी।
1: दूसरे 3 महीनों के बीच हर एक महीने में हम लोग जांच के लिए मरीज को बुलाते हैं।
0: अच्छा।
1: और तीसरे 3 महीने में हर एक 15 दिन पे जांच होना बहुत ही आवश्यक है।
0: ये किस तरह का जांच होता है?
1: जब पहली बार मरीज हमारे पास आती है, तब भारत में ऐसा देखा गया, हमारे पास जो भी पेशेंट आती हैं वो 3 महीना ज्यादातर बिता के आती है।
0: अच्छा।
1: लेकिन मरीज को जैसे ही उनका मासिक रुका वैसे ही आके डॉक्टरी जांच करानी चाहिए। तो पहले जांच में सबसे पहले हम लोग पेशेंट का एक क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट किस इलाके को बिलोंग करती है, उसका उम्र क्या है,
0: एनवायरनमेंट कैसा रहता है,
1: पहले उसके मतलब कि कितने बच्चे हैं, कोई बच्चा खराब तो नहीं हुआ है।
0: अच्छा।
1: इस तरह का सारा जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम लोग उसका केमिकल टेस्ट्स कराते हैं।
0: किस तरह के टेस्ट होते हैं?
1: टेस्ट में रूटीन जो टेस्ट होते हैं वो जनरल सभी पेशेंट्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, वो है एक हीमोग्लोबिन की जांच।
0: अच्छा।
1: एक ब्लड शुगर, उसके बाद एक सिफिलिस की जांच होती है जिसको VDRL कहते हैं। आजकल HIV की भी जांच होने लगी है।
0: अच्छा।
1: HIV का जांच कराना जरूरी है। एक ऑस्ट्रेलिया एंटीजन होता है।
0: अच्छा।
1: उसका जाँच होता है और ब्लड शुगर का जाँच। ये सारे जांच कराने के बाद में हम लोग पेशेंट को रिपोर्ट के साथ बुलाते हैं। और पहले 3 महीने में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: फिर महीने महीने जांच के बाद 4th से 5th महीने में पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है
0: जी।
1: और हर एक जांच में पेशेंट जो
0: हिस्ट्री
1: और रेगुलर चेकअप्स वो करते हैं, और उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, उसका हीमोग्लोबिन तो नहीं घट रहा है। अगर ऐसा महसूस हुआ कि जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उतना नहीं है, टेस्ट में आया कि कम है, तो उसको आयरन कैल्शियम की गोली के बाद में फिर अगली बार फिर टेस्ट कराते हैं। ऐसे जनरली हम लोग हीमोग्लोबिन जाँच बार बार नहीं कराते।
0: अगर मान लीजिए कोई महिला इन सब जाँच को नजरअंदाज करती हो तो उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं?
1: अगर कोई महिला, जैसे कि पहले के ज़माने में देखा जाता था कोई जांच नहीं होता था।
0: अच्छा।
1: वैसे में डिलीवरी के दौरान काफ़ी मेटर्नल डेथ हुआ करता था।
0: अच्छा।
1: साथ में नियोनेटल डेथ, मतलब बच्चे भी जन्म लेते लेते प्रसव के दौरान मर जाया करते थे। इन चीज़ों को हमें बचाना है, इसके लिए रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी है। फिर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया डेवलप कर जाता है। उससे क्या होता है कि 9 महीने में जो महिला को डिलीवर करना है वो 7 ही महीने में बच्चा हो जाता है, प्री मैच्योर बेबी होता है। फिर प्री मैच्योर बेबी के कारण बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के डर रहते हैं।
0: कुछ वैक्सीनेशन जो ज़रूरी हो जाता है इस दौरान?
1: हाँ, इस दौरान हम लोग 2 टीका लगाते हैं। वो टेटवेक का टीका होता है टेटनस से बचाने के लिए महिलाओं को, 1-4 महीने में, और उसके 1 महीने के बाद 5वें महीने में फिर दूसरा टीका लगता है।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि प्रसव के पूर्व बहुत सारी ऐसे जांच है जिन्हें कराना बहुत जरूरी है। अगर इस पे हम ध्यान दें तो बहुत हद तक जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बना रह सकता है। डॉक्टर साहिबा, आपने जो उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता प्रसव पूर्व डॉक्टरी जांच। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर निशा यादव, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 870-001-4242 पर।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात और

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल

0: दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
5: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
6: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का

0: पुनरीक्षण आयोग का अधिकार प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज। संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan port should be developed as a

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के सभी 24 जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना, कैबिनेट ने दी मंजूरी। राज्य सरकार मुफ्त देगी एलोपैथी और आयुष की दवाइयां। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का निर्णायक अभियान तेज। आईजी अभियान ने कहा, नक्सलियों की पूरी घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राजधानी रांची सहित राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में झारखंड T20 प्रीमियर लीग का 10 जून से होगा आयोजन। 6 टीमें लेंगी हिस्सा। 30 मई को होगी 241 खिलाड़ियों की नीलामी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं, कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 24 जिलों में अबुआ दवाखाना खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन केंद्रों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध होगी। शुरुआत में 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एकीकृत औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां जरूरी दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। कैबिनेट ने NDPS एक्ट के तहत मादक पदार्थों से जुड़ी सूचना

0: जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम लगातार अभियान चला रही है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों का अभियान सही दिशा में चल रहा है और नक्सलियों की पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई है।
1: बाबूद में ये अंतिम कील है जो हम लोगों को ठोकनी है और इसमें लगभग सभी नक्सल्स जो इम्पोर्टेंट नक्सल थे वो या तो सरेंडर हो गए या फिर न्यूट्रलाइज हो गए। बाकी जो नक्सल्स बचे हुए हैं उनसे मेरी अपील है कि या तो आप सरेंडर हो जाइए अन्यथा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे।
0: सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बुरुडी से कांदरबेड़ा के बीच सुवर्णरेखा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया। उन्होंने कहा कि पुल बनने से क्षेत्र का सीधा संपर्क NH 32 से जुड़ जाएगा, जिससे आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा होगी। इस दौरान उन्होंने बुरुडी में जल्द डिग्री कॉलेज निर्माण शुरू कराने की घोषणा भी की।
2: चंडील से ही आना जाना सुविधा हो, नहीं तो यहाँ कांडरा जाना पड़ेगा इधर, फिर नहीं तो घूम कर गम्हरिया होते तो फिर 15 किलोमीटर। इसीलिए यहाँ हो जाने के बाद NH पकाने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सारा सुविधा को देखते हुए हम जो मुख्यमंत्री थे उसी समय ये सब हम सेंक्शन करा दिया और इसी बुरुडी में ही डिग्री कॉलेज भी बने ताकि यहाँ का विद्यार्थी कहीं दूसरा जगह जाके पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
0: खूंटी जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से 29 मई से 4 जून तक चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा समाज में फैली झिझक और भ्रांतियों को दूर करना है। उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि महामारी से जुड़े विषयों पर पुरुषों को भी जागरूक करना जरूरी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुर्बानी के साथ इसकी शुरुआत की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बकरीद की बधाई दी। जामताड़ा जिले में बकरीद शांति, सद्भाव एवं सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त आलोक कुमार ने जिलेवासियों से शांतिपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास से बकरीद मनाने की अपील की है।
3: आप सभी से ईद उल जुहा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। ईद उल जुहा बकरीद, त्याग, समर्पण, भाईचारा एवं मानवता का संदेश देने वाला पर्व है। साथ ही साथ यह पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सामाजिक एकता और मजबूत करता है। मैं समस्त जिलेवासियों से अपील करता हूं कि शांति, सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
0: सिमडेगा में अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस की नारकोटिक्स विरोधी टीम और सिमडेगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 33 किलो अफीम बरामद की गई है। इसकी अनुमानित कीमत 1,68,00,000 रुपए से अधिक बताई गई है। SDPO धर्मदेव पासवान ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर नागपुर ले जाया गया है।
4: जांच में उसके पास से अफीम बरामद हुआ। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वो बताया कि सिमडेगा में कुछ अफीम रखा हुआ है, जिसे कि नारकोटिक पुलिस नागपुर द्वारा बरामद किया गया है और जब्त सामान लगभग 33.76 किलोग्राम वजन का अफीम है। 23,35,000 रुपया भी बरामद किया गया है। जब्त सामानों का कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया है।
0: राजधानी रांची सहित राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम

विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तर्ज पर बहुप्रतीक्षित टी20 प्रीमियर लीग का आयोजन 10 जून से होगा। जेएससीए की ओर से आयोजित होने वाली इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें रांची कैपिटल्स, जमशेदपुर स्टीलर्स, धनबाद डायमंड्स, छोटा नागपुर रॉयल्स, कोयलांचल सुपर किंग्स और संथाल स्ट्राइकर्स शामिल हैं। लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 30 मई को जमशेदपुर के द वेव इंटरनेशनल में आयोजित होगी। जेएससीए ने नीलामी के लिए 241 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, कैबिनेट का फैसला, हर जिले में अबुआ दवाखाना, ड्रग तस्करी की सूचना देने पर 2 लाख रुपए तक का इनाम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्य सरकार का डीए 9% तक बढ़ा। हिंदुस्तान ने लिखा, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। और दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के सभी 24 जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना, कैबिनेट ने दी मंजूरी। राज्य सरकार मुफ्त देगी एलोपैथी और आयुष की दवाइयां। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का निर्णायक अभियान तेज। आईजी अभियान ने कहा, नक्सलियों की पूरी घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राजधानी रांची सहित राज्य के 20 जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में झारखंड टी20 प्रीमियर लीग का 10 जून से होगा आयोजन, 6 टीमें लेंगी हिस्सा, 30 मई को होगी 241 खिलाड़ियों की नीलामी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, सुबह सुबह जब ठंडी हवा चलती है तो दिल किसी अपने को याद करने लगता है। मोहब्बत का रिश्ता भी कितना अजीब होता है ना। दो जिस्म होते हैं लेकिन एक जान होती है। इसी एहसास को शब्दों में पिरो रहा है हमारा ये गीत।

श्रोताओं, जिंदगी भी कितनी अजीब पहेली है ना। हम रोज भागते हैं, अपनों के बीच रहते हैं, मुस्कुराते हैं, पर कभी कभी एक ऐसा लम्हा आता है जब सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी बेगाना सा लगने लगता है।

श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थी अधिकार और तड़ीपार। आवाजें किशोर कुमार, एस पी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की थी। गीतकार थे रमेश पंत और समीर। संगीत निर्देशन था राहुल देवबर्मन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचे को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में

जानकारी दी। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम सऊदी अरब के जेल से रिहा होने के बाद आखिरकार केरल में अपने घर लौट रहे हैं। रहीम सऊदी अरब की जेल में लगभग 2 दशक तक कैद थे। कोझिकोड जिले के रामनट्टुपुरा में के मूल निवासी रहीम आज सुबह सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए। रहीम को एक 15 वर्षीय विकलांग लड़के की मौत के संबंध में दोषी ठहराया गया था। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरी ईद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 196 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं आप सुनेंगे सुरंजना।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
5: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
6: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
6: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
5: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 से 11 तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 से 1 के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
7: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 800,000 सालों या 800,000 सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
8: हेलो डॉक्टर,
9: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
8: हेलो डॉक्टर।
9: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
8: हेलो डॉक्टर।
10: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपने चुन किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे आज एक ही गायक को और आज के गायक हैं SP बाला सुब्रमण्यम।

आपने सुना साजन फिल्म का ये गाना। कार्यक्रम सुरंजना में श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं एस पी बाला सुब्रमण्यम के गाए गाने। एस पी बाला सुब्रमण्यम सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे आवाज के जादूगर हैं। उन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाना गाए हैं। लेकिन जब उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो वे सलमान खान के स्क्रीन पेजेस की पहचान बन गए।

मैंने प्यार किया, आपने सुना इस फिल्म का गाना। रचनाकार थे देव कोहली और संगीत था राम लक्ष्मण का। श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं सुरंजना में एस पी बाला सुब्रमण्यम को।

हम आपके हैं कौन, आपने सुना इस फिल्म का गाना। गीतकार थे देव कोहली, संगीत निर्देशन राम लक्ष्मण का था। अब आइए सुनवाते हैं एस पी बालासुब्रमण्यम को फिल्म वंश में।

0: ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म वन से। एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस गीत को रचा था समीर ने, संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का था। और इस गाने के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से ख्याल गायन, राग है तोड़ी।

ni ma ga ga le ni da le ni da ma ni ni da ma da.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग तोड़ी पर आधारित ये ख्याल गायन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर,

0: मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
4: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
3: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
2: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 km of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The festival of sacrifice Eid ul-Azha or Bakrid is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques. In national capital Delhi, main Eid prayers congregations are being held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion. In a message, the president said that the festival symbolizes devotion.

0: sacrifice and selflessness. Prime Minister Narendra Modi has greeted people on the occasion of Eid al-Adha. In a social media post, Mr. Modi hoped that the occasion will deepen the spirit of brotherhood and happiness in the society. He also prayed for everyone's success and good health. Prime Minister Narendra Modi today remembered Veer Savarkar on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said, "The courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people." The Prime Minister said, "Veer Savarkar's intellect and emphasis on social reform are also noteworthy." In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Tomorrow, Rajasthan Royals will take on Gujarat Titans in qualifier 2 for a place in the final. The final match will be played on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Earlier, Royal Challengers Bengaluru stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier 1 match at Dharamshala on Tuesday. In Norway chess, R. Pragyananda defeated the Norwegian world number 1 Magnus Carlsen, gripping the contest to claim 3 full points in round 3 of the tournament yesterday. In contrast, world champion D. Gukesh continued to endure a difficult run, suffering another setback after losing to Alireza Firuza in the final game. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमले किए। अफ्रीका रोग नियंत्रण और बचाव संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजने पर भारत का आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 695 मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी। ईद उल अजहा आज पूरी दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है और आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। अब समाचार विस्तार से। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास शहर में ईरानी सैन्य ठिकाने पर हमले किए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसके बलों ने 4 ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। अमरीका ने कहा कि ये ड्रोन जलडमरू मध्य के आसपास खतरा पैदा कर रहे थे। ईरान की मीडिया ने शहर के पूर्व में विस्फोटों की खबर दी, हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कहा कि हमलों से कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ है। इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से में निवासियों के लिए निकासी आदेश जारी किए हैं और हिजबुल्ला के खिलाफ नए हमलों से पहले इन क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसराइली रक्षा बलों ने निवासियों से जहरानी नदी के उत्तर में सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया है। इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला पर बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। ये 17 अप्रैल को युद्ध विराम लागू होने के बाद से सबसे बड़ा निकासी आदेश है। इसराइल ने कल दक्षिणी शहर टायर पर हमले किए। हिजबुल्ला ने इसराइल पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया है। ये हमले इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इसराइल में नागरिकों पर हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों के बाद अपने जमीनी अभियान के विस्तार की घोषणा के बाद हुए हैं। इसराइल की सेना ने पिछले 24 घंटों में 9 बार लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी दी है, जिससे इसराइल लेबनान सीमा पर विस्थापन की आशंका बढ़ गई है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला ने देश में आपदा नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहायता का अनुरोध किया है। क्यूबा को अमरीका द्वारा लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल समर्थन का आग्रह किया। अमरीका द्वारा क्यूबा पर कई प्रतिबंध लगाने के बाद तथा ऊर्जा और ईंधन की कमी को लेकर देश में तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्यूबा के विदेश मंत्री ने परिषद में कहा कि उनका देश मानवीय आपदा का सामना कर रहा है, इसलिए ये समय एकजुटता दिखाने का है। अमरीकी प्रतिबंधों के कारण क्यूबा में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। देश में भोजन, दवा और बिजली की कमी हो गई है। देश 22 घंटे या उससे अधिक समय तक बिजली कटौती से जूझ रहा है और स्थिति बेहद गंभीर है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है।

0: इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुँचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। रोग नियंत्रण केंद्र ने पूरे महाद्वीप में स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुंडी बुगियो वायरस से होने वाले इबोला स्ट्रेन के लिए कोई भी स्वीकृत दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका को विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम के तहत 695 मिलियन अमरीकी डॉलर देने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी बाहरी भुगतानों और आयात नियंत्रणों से जुड़ी दो मुख्य शर्तों का उल्लंघन होने के बावजूद दी गई है। इस कार्यक्रम की पांचवी और छठी समीक्षा पूरी होने के बाद जारी बयान में IMF ने कहा कि श्रीलंका कोई नया बाहरी भुगतान बकाया न रखने और आयात प्रतिबंधों को लगाने या उन्हें और सख्त करने से बचने के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौद्गल्यायन से संबंधित हैं। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। ये अवशेष मंगोलिया की राजधानी उलानबतार में 31 मई से सार्वजनिक दर्शन के लिए रखे जाएंगे। वहां 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। ये पहल भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे सांची जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के प्रति विदेशी पर्यटकों की रुचि भी बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
1: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
0: ईद उल अजहा आज दुनिया भर में धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईद की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जा रही है। ईद उल अजहा पैगम्बर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम सऊदी अरब के जेल से रिहा होने के बाद केरल में अपने घर लौट रहे हैं। रहीम सऊदी अरब की जेल में लगभग 2 दशक तक कैद थे। कोझिकोड जिले के रामनट्टुकरा के मूल निवासी रहीम आज सुबह सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए। भारतीय दूतावास ने बताया कि रहीम को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में सऊदी कानून के तहत 20 साल की जेल की सजा काटने के बाद क्षमादान देकर रिहा कर दिया गया। रहीम को एक 15 वर्षीय विकलांग लड़के की मौत के संबंध में दोषी ठहराया गया था। आर प्रज्ञानानंद ने कल नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में नॉर्वे के विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। डी गुकेश को फाइनल में अलीरेजा फिरोजा से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानानंद के 4.5 अंक हो गए हैं और वे नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रज्ञानानंद अब अलीरेजा फिरोजा से पीछे हैं जो 7.5 अंकों के साथ प्रतियोगिता में शीर्ष पर है। वही गुकेश 3.5 अंकों पर बने हुए हैं। बेंगलुरु में 8वीं भारतीय ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमले किए। अफ्रीका रोग नियंत्रण और बचाव संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजने पर भारत का आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए $695 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी। ईद उल अजहा आज दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे इस सफर में स्वागत है आपका। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं ये गीत फिल्म बजरंगी भाई जान से। अदनान सामी की आवाज़ है, कैशर मुनीर की रचना है और संगीत प्रीतम का है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं गीतों भरे सफर में अगला गीत है मुझसे शादी करोगे फिल्म से। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की है, शब्दकार हैं 40 शेरवानी, संगीत निर्देशन साजिद वाजिद का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और हमारे श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के सफर में। आइए सुनवाते हैं अगला नगमा बाजीराव मस्तानी फिल्म से। श्रेया घोषाल और चंदन सिवे की आवाजें हैं। लीला संजय भंसाली ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और रचनाकार हैं सिद्धार्थ गरिमा।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

जी तो आपने सुना बंटी और बबली फिल्म से आलिशा चिना, शंकर महादेवन और जावेद अली के गाए इस गीत को रचा था गुलजार ने। संगीत निर्देशन शंकर एहसान लॉय का था। अब आइए सुनवाते हैं जरा हट के जरा बच के फिल्म का ये गाना। शब्दकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं सचिन जिगर, आवाज़ें अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की हैं।

अरिजीत सिंह और सचिन जिगर के गाए फिल्म जरा हटके जरा बचके के इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है।

0: विक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 30रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। बकरीद पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जानी चाहिए। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 11:05 और 38 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी दोस्त पूनम श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ प्रकृति से जुड़ी बातों के साथ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये न केवल हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करती है। पेड़ पौधे, फूल फल, नदी पहाड़, आकाश, पशु पक्षी और जलवायु सभी मिलकर प्रकृति का हिस्सा बनते हैं। ये हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। प्रकृति की सुंदरता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में हम अपने विकास और लाभ के लिए प्रकृति को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवों की अव्यवस्थित शिकार जैसे कारणों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ सा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप न केवल पर्यावरणीय संकट बढ़ रहा है बल्कि मनुष्य की जीवन शैली भी प्रभावित हो रही है। दोस्तों, प्रकृति की रक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बन चुकी है। हमें इसके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। ये केवल सरकार या संस्थाओं का कार्य नहीं है बल्कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाएं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का प्रयोग कम करें और जल, वायु और मृदा के संरक्षण के लिए कदम उठाएं। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने से न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि हम भी एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। यदि हम अपनी धरती और प्रकृति का ख्याल रखते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुंदर और सुरक्षित वातावरण हम छोड़ सकते हैं।

दोस्तों, आज ईद उल अजहा, जिसे आम तौर पर बकरीद के नाम से जाना जाता है, आज मुस्लिम समुदाय इस त्यौहार को मना रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम की पवित्र कहानी का प्रतीक है, जिन्होंने अल्लाह के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय देते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की थी। बलिदान और भाईचारे के इस मुबारक त्यौहार पर आपकी सभी नेक ख्वाहिशें पूरी हो। अल्लाह आपको सेहत और कामयाबी अदा करें।

बजरंगी भाईजान, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी अदनान सामी और साथियों की। गीत के बोल लिखे थे कौसर मुनीर ने और संगीत बद किया था प्रीतम ने।

दोस्तों कहते हैं मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। ये वो मोती है जिससे इंसान की पहचान होती है। दोस्तों वाणी की मधुरता न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाती है, बल्कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी हमें दिलाती है। जो लोग मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, वे अक्सर अपने आसपास के लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लेते हैं। व्यक्तिगत विकास में भाषा का महत्व तो होता ही है, वाणी की मधुरता भी उतनी ही जरूरी होती है। मधुर बोलना एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे सीखी जाती है और जीवन भर संवारी जाती है। जब हम अपने अहंकार, क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखते हुए मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, तो न केवल अपने आप को निखारते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव हम डालते हैं। दोस्तों मीठी बोली हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रिश्तों को मजबूत बनाती है और रिश्तों में सहजता लाती है। कटु शब्द न केवल दूसरों को दुखी करते हैं, बल्कि बोलने वाले के भीतर भी अशांति पैदा करते हैं। इसलिए मीठी बोली मन को शीतलता और संतुष्टि देती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। उन्हें सावधानी और

सोहनी महिवाल फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाज़ें थी आशा भोसले और शब्बीर कुमार की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

छोटे से अंतराल के बाद श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ पूनम श्रीवास्तव। श्रोताओं हर वर्ष 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस की शुरुआत 1987 में कोस्टा रिका में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और समग्र चुनौतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ये दिन महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात

निरोधक साधनों तक पहुंच और प्रसव संबंधी अधिकारों पर जोर देना होता है। साथ ही महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य परिवर्तनों पर चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य को संरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें, कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड से भरपूर संतुलित आहार लें, पर्याप्त आराम करें, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और थायराइड की नियमित जांच कराते रहें। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी बातें हो ही रही है तो आपको बताते चले कि आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस भी है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है महिलाओं को सेफ पीरियड्स के फायदों से अवगत कराना, साथ ही पीरियड्स के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। इस वर्ष का थीम है टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। महावारी को लेकर फैली झिझक, भेदभाव और अंधविश्वास को खत्म करना ही प्रमुख उद्देश्य है इस दिवस का।

डोली सजा के रखना, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी साधना सरगम श्रीनिवास और साथियों की। गीत के बोल लिखे थे महबूब ने और इसे संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने।

दोस्तों आज वीर सावरकर जयंती है। ये दिन महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और समाज सुधारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में हुआ था। वे हिंदुत्व विचारधारा के प्रमुख प्रणेता थे। उनका जीवन देश की आज़ादी के लिए संघर्ष और अदम्य साहस का प्रतीक रहा। उन्होंने लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी और भारत में अभिनव भारत सोसाइटी जैसे गुप्त संगठनों की स्थापना की। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। सन 1910 में नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांस के मार्सेलिम बंदरगाह पर जब जहाज रुका तो वे शौचालय के पोर्टहोल से समुद्र में कूद गए और तैरकर फ्रांस की सीमा में पहुंच गए। बाद में उन्हें पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया गया। सन 1911 से 1921 तक अंडमान निकोबार के कुख्यात सेलुलर जेल में उन्हें रखा गया। उन्हें कोलू से तेल पेरने जैसी अमानवीय यातनाएं दी गई। बाद में उन्हें 1924 में रिहा किया गया। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने अस्पृश्यता निवारण, अंतरजातीय विवाह और पतित पावन मंदिर की स्थापना जैसे सामाजिक सुधार के कार्य किए। उन्होंने हिंदुत्व कौन है हिंदू नामक पुस्तक लिखकर अपनी राजनीतिक

धार्मिक विचारधारा रखी। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। वे जीवन के अंतिम समय तक अखंड भारत के समर्थक रहे।

साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी यशुदास की, गीत की बोल लिखे थे इंदिवर्णी और संगीत था उषा खन्ना का। और दोस्तों अब चलते चलते बात मौसम की हो जाए। जमशेदपुर और आसपास के इलाके के लोगों को कल भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही उमस अन्य दिनों की अपेक्षा कम थी। 4:30 बजे के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में आंशिक बारिश हुई। इस बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हो गया। हवा में नमी की वजह से लोगों ने काफी राहत महसूस की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जमशेदपुर केंद्र के अनुसार 30 मई तक क्षेत्र में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान ने गुरुवार के लिए यानी आज के लिए थंडर स्क्वायल गरज चमक के साथ अचानक तेज हवा और मूसलाधार बारिश या ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान के मुताबिक आज तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। आज अधिकतम तापमान की बात करें तो 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

बाबू फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत की बोल मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत था राजेश रोशन का। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम यहीं तक। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार जमशेदपुर, अभी आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, दिन के बारे
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई

मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। इस समय दिन के 12:05:50 हुए हैं। कार्यक्रम शीर्षक गीत सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

प्रस्तुति कार्यक्रम शीर्षक की कार्यक्रम शीर्षक गीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। वो राहें वो मंजर फिर से बुलाते हैं मुझे, साथ गुजारे पल बहुत याद आते हैं मुझे। जिसको भी चाहा दिल से समझा अपना, न जाने क्यों राह में छोड़ जाते हैं मुझे।

0: दोस्तों, मन की दहलीज पर रख यादों की चिराग, आज रोशन है कार्यक्रम शीर्षक गीत। जी हाँ दोस्तों, ये यादें ही हैं जो हमें सुकून की कुछ पल दे जाती हैं। दिल में उनके यादों की झलक सी रहती है, इन हवाओं में हर पल उनकी महक सी रहती है।
1: गाड़ी है

वो चाहना हमें सुबह शाम, वो हर नज़र मोहब्बत के नाम। तुम भुला दो वो बातें तमाम, हमें याद हैं हर इकरार।

श्रोताओं, शीर्षक गीत का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो थे दो बदन, बाजार, पत्थर के सनम और जख्म। आवाजें थी लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह और अलका याग्निक की। गीत रचना थी शकील बदायनी, बशर नवाज, मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी की। संगीत था रवि खयाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एमएम क्रीम। और अब कार्यक्रम शीर्षक गीत से अपनी दोस्त पूनम श्रीवास्तव को दें इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में ख्याल गायन, राग है गॉड सारंग।

पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन अभी आप सुन रहे थे राग गौड़ सारंग में। अब आइए सुनते हैं राग मुल्तानी में ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी।

अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन राग मुल्तानी में। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। दिन का एक बजा जाता है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok.
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके. महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही. इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा.
2: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the Education Minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले.
4: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज. द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली. दिस इज अ प्रोविजन अंडर द ओएसएम सिस्टम. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सीबीएसई हैज इंप्लीमेंटेड दिस सिस्टम. सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट. आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली. वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड.
2: The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Adha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month will be released soon. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will submit his resignation to the Governor this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed this while leaving the breakfast meeting called by Siddaramaiah. He said Siddaramaiah has been told by the Congress High Command to resign and accordingly he will submit his resignation at Lok Bhavan. He further informed that D.K. Shivakumar will take over as the Chief Minister. Bharatiya Janata Party BJP leader from Punjab, Kewal Singh Dhillon, has been appointed as the state president of the party's Punjab unit today. He has been given the charge of Punjab unit by the party's national president, Nitin Naveen. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to American strikes near Bandar Abbas Airport. Tehran did not disclose the location of the base that was attacked, but Kuwait, a U.S. ally, said earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. The festival of sacrifice, Eid ul-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. And with that, we end this news bulletin.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रांची पुलिस ने लापुंग से 10 लाख के इनामी नक्सली पीएलएफआई सुप्रीमो अमृत होरो को किया गिरफ्तार। रंगदारी और आगजनी के कई मामलों में था वांछित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिलाया शिकायतों के समाधान और जवाबदेही का भरोसा। कहा, सीबीएसई 12वीं परीक्षा में अब शुरू होगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया। ट्रेनों की लेट लतीफी पर विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल। टाटानगर रेलवे स्टेशन दौरे पर पहुंचे महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। राज्य में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं। और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। भाला फेंक कर जीता स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार और दीप्ति जीवन जी को भी मिला गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। रांची पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली संगठन के सुप्रीमो कमांडर अमृत होरो को लापुंग इलाके से गिरफ्तार किया है। अमृत होरो पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ रांची और खूंटी समेत कई इलाकों में रंगदारी, आगजनी और रेलवे व निर्माण परियोजनाओं में बाधा पहुंचाने के मामले दर्ज हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर देर रात कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वर्ष करीब 17 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई, जिनमें करीब 40 करोड़ स्कैन पेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सीबीएसई ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और छात्र हित सुनिश्चित करना है। अब छात्र अपने स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं देख सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
1: कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, उसको इसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है। सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है।
0: टाटानगर स्टेशन के दौरे पर पहुंचे दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने आश्वस्त किया कि कोल्हान क्षेत्र में पहले पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही मालगाड़ियों को पास किया जाएगा।
2: वहाँ से एक इशू रेज किया गया था कि गुड्स ट्रेन को चक्रधरपुर डिवीजन में प्राथमिकता दी जा रही है और कोचिंग ट्रेन को रोककर गुड्स ट्रेन को आगे चलाया जा रहा है। तो हमने उनको ये बताया है कि इसके बारे में किसी भी तरह हालत में हम गुड्स ट्रेन कोचिंग ट्रेन को रोक के गुड्स ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर कोचिंग ट्रेन जा रही है तो कोचिंग ट्रेन ही आगे जाएगी।
0: वहीं विधायक सरयू राय और रेल यात्री संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी का मुद्दा उठाया। सरयू राय ने कई यात्री ट्रेनों के घंटों देरी से चलने का रिकॉर्ड जीएम के सामने रखा।
3: केवल एक ही मांग है कि जो ट्रेनें हैं वो समय पर चलें। फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों की ये धारणा है कि जो यात्री गाड़ियां हैं उसे रोक करके और मालगाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है और ये लेट होने का बड़ा कारण है। मैंने कहा कि रेलवे को मालगाड़ी की ढुलाई से ना आमदनी होता है किराए, उससे अधिक नुकसान जनता का।
0: झारखंड मंत्रालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महनंद राम आत्माराम टेकरीवाल फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस स्वर्गीय आत्माराम टेकरीवाल की पुण्य स्मृति में दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की पहल समाज सेवा और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण है। झारखंड अधिविद्य परिषद ने मदरसा परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य भर में परीक्षाएं 16 जून से 23 जून तक दो पालियों में आयोजित होंगी। परिषद ने मदरसा प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे 8 जून से प्रवेश पत्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। वहीं रोल शीट का वितरण 10 से 12 जून के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक संबंधित मदरसों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com www.sandal.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार xsandal@eirnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xsandal@eirnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई उज्ज्वला योजना ने धनबाद की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। धनबाद की रमा सिन्हा ने कहा कि इस योजना ने सिर्फ महिलाओं की सेहत और समय को नहीं बचाया है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी काफी हद तक संरक्षण मिला।
4: 10.5 करोड़ महिलाओं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है। आज महिलाएं उस धुएं से बच रही हैं, जो लकड़ियां जलता था, धुआं उठता था, उस धुएं से बच रही हैं। उसके बाद उनका स्वास्थ्य का ख्याल, धुएं से कई प्रकार की बीमारियां होती थी महिलाओं को।
0: ईद उल अजहा का त्यौहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई मंत्रियों व अन्य ने आज ईद उल अजहा के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, यह त्यौहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बकरीद की बधाई दी। दुमका समेत पूरे संताल परगना में गर्मी बढ़ने के साथ सर्पदंश की घटनाओं में तेजी आई है। मई महीने के 26 दिनों में संताल परगना में सर्पदंश के 191 मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दुमका जिले में 26 दिनों के भीतर सर्पदंश की 31 घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पाकुड़ जिले में 60 मामले अस्पतालों तक पहुंचे हैं। गोपी कांदर प्रखंड के रोला पहाड़ी गांव में करैत सांप के काटने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। झारखंड में भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से अगले 5 दिनों तक कहीं भी लू चलने की संभावना नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आने वाले दिनों में तेज हवा, आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बेंगलुरु में 8वीं भारतीय ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता। सुमित ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74.82 मीटर का थ्रो किया। उन्होंने वर्ष 2022 के हांगझोउ एशियाई पैरा खेलों में 73.29 मीटर का थ्रो किया था। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने 62.88 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। राजस्थान के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची पुलिस ने लापुंग से 10 लाख के इनामी नक्सली PLFI सुप्रीमो अमृत होरो को किया गिरफ्तार। रंगदारी और आगजनी के कई मामलों में था वांछित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिलाया शिकायतों के समाधान और जवाबदेही का भरोसा। कहा, CBSE 12वीं परीक्षा में अब शुरू होगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया। ट्रेनों की लेट लतीफी पर विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल। टाटानगर रेलवे स्टेशन दौरे पर पहुंचे महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। राज्य में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं। और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। भाला फेंक कर जीता स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार और दीप्ति जीवन जी को भी मिला गोल्ड मेडल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:20 और 50 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
6: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
7: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें,
7: बातों मुलाकातों के साथ
5: सुरीला मनोरंजन
6: और भी बहुत कुछ।
5: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
7: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।

बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की। गीत के बोल लिखे थे हिंदी वर्णी और इस गीत को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में बेमिसाल फिल्म का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी ने इस गीत को रचा था और संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में एक नज़र इस फिल्म का गीत।
1: शबनम, ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
2: लेकिन बहुत हसीन है।
1: मैं रोकूंगी, मैं
2: अमीन, ना कहीं ऐसा ना हो

0: एक नज़र इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

लगी रहो मुन्ना भाई, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और संगीतबद्ध किया था शांतनु मोइत्रा ने। आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं फना फिल्म का गीत। आवाजें हैं शान और कैलाश खेर की।

फना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी शान और कैलाश खेर की। इस गीत को लिखा था प्रसन्न जोशी ने और संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं गदर 2 फिल्म का ये गीत।

0: गदर 2 फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज़ में। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा था और मिथुन ने संगीतबद्ध किया था। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स।

0: धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोक भवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
5: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
6: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
7: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत में फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: पर बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता महबूब खान की पुण्यतिथि है। महबूब खान भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। उन्हें मुख्य रूप से सामाजिक महत्व की महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार, दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार से भी नामांकित हुई थी। आइए इस फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं कार्यक्रम में पहले।

मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने संगीतबद्ध किया था। आइए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं जीने की राह इस फिल्म का गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीत के बोल आनंद बख्शी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जीने की राह, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी, गीत की बोल आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी।

ये रात फिर न आएगी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, महेंद्र कपूर की आवाज थी। इस गीत को लिखा था SH बिहारी ने और संगीत बद किया था OP नैयर ने। आइए श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, फिल्म आया सावन झूम के से।

आया सावन झूम की इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये सफ़र यहीं तक, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार सुनेगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद के पैनमेन ऑडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलेजेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा बेहद जरूरी हो गई है। ऐसे में कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी समझ विकसित करने के में सहायक साबित होंगे। रांची पुलिस ने एक बड़े अभियान में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगना अमृत होरो को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस दल ने उसे गिरफ्तार किया। अमृत होरो रांची, खूंटी और आसपास के जिलों में जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल था। पुलिस अन्य उग्रवादियों और संगठन के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अमृत होरो से पूछताछ कर रही है। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया, जबकि 1 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि बोड़ो इलाके में नाबालिग लड़कियों को डरा धमका कर और मारपीट कर देह व्यापार कराया जा रहा था।
2: बोड़ो के एक घर में छापामारी किया गया, जहाँ से 2 नाबालिग लड़की को बरामद किया गया और जिस महिला के द्वारा ये काम कराया जा रहा था उनको उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसमें और भी 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी की गई है। उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अगर इस तरह के घटना को अंजाम देने के लिए और भी लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाती है आगे, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की।
1: धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद में बीती रात अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी की खबर है। देर रात हुई अंधाधुंध फायरिंग में दोनों पक्षों के 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है। वहीं दूसरे व्यक्ति का इलाज निचितपुर स्थित एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के मानने वालों ने सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इधर जमशेदपुर में भी बकरीद ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद अल्लाह के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज जमशेदपुर के धटकीडीह समेत विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। मौके पर उपस्थित नमाजी ने बताया कि पूरे देश में अमन शांति की दुआ की है।
3: ईद उल अजहा की नमाज बकरीद की नमाज खूब अमन शांति के साथ हमने अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुआएं की और मुल्क में अमन अमान की दुआएं की हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इबादतों को, कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
1: जामताड़ा के दुमका रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास आज एक स्कूटी पर सवार 3 युवक डंपर की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल युवकों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने जामताड़ा दुमका सड़क मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध कर दिया है। झारखंड स्टेट ओलंपियाड 2025 में सरायकेला खरसावां जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT रांची के निर्देशक शशि रंजन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार राज्य स्तरीय मेधा सूची में जिले के 5 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मिघरा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पुल ए में रखा गया है। पुल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।

0: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से, वो घर में है क्या?
1: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
0: तो कोई बड़ा है घर में?
1: हाँ, घर पर माता जी है ना।
0: जी बुलाइए।
2: माँ।
3: हाँ।
2: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
0: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम, ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
2: माँ, माँ।
4: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
4: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
4: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं,
2: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
4: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
4: हाँ माँ।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
6: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
6: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
6: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।

0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थी।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगीं और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय!
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।
1: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा।
2: Yeah!

0: घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं आशा भोसले और सुजात खान की आवाजों में कुछ गीत।

आशा भोसले और सुजात खान की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक गीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं पंच परगनिया लोकगीत। कलाकार हैं कृष्ण चरण कोइरी।

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चरण कोइरी की आवाज में पंच परगनिया लोकगीत। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब सुनिएगा समाचार मुख्यांश और उसके ठीक बाद यानी शाम 4:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलेजेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग की बैनर तले 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हजारीबाग में यह कार्यक्रम प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग ध्रुवचंद्र मिश्रा के दिशा निर्देश में और सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी के देखरेख में चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के देवघर केंद्र में अब धर्म, अध्यात्म और जनजातीय अध्ययन से जुड़े कई नए कोर्स शुरू किए गए हैं। धर्मनगरी देवघर में छात्रों के लिए अब वैदिक अध्ययन, ज्योतिषाचार्य और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों में डिग्री हासिल करना आसान हो गया है। इग्नू के क्षेत्रीय निर्देशक अरविंद कुमार मनोज ने जानकारी दी कि संथाल परगना क्षेत्र के छात्रों को ध्यान में रखते हुए कई नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य भर में शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के मानने वालों ने सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इधर जमशेदपुर में भी बकरीद ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद अल्लाह के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामिघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पुरुषों के वर्ग में भारत को पुल ए में रखा गया है। पुल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जय हिंद बोलता हूँ। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
0: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए ज़रूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है,

0: पीएफबी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो आपको क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है चारों तरफ, आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने लिया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती हैं, तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF।
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है, बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, ये खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी, तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए, जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह है, बहुत खुशी के भाव थे। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया, कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है,

0: प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए यहाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
1: जी निश्चित रूप से जब आपको रास्तों चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, ऐसे सुखद बात और को छू नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जो जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
0: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: अपने हाँ
0: बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकल्केट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी,
1: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके, कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रही हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी

0: बी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट के की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यूई थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती हैं।
1: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर रस्सा कस्सी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचों के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना। क्या बात है, तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?

0: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का हो है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है। तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौक़ों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफ़र डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब ही रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते ना होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: क्या
0: तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल में कश्मीर में मैं बिता कर आया। तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह

0: अनुभव रहा है जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है
1: जी। एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
0: जी,
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने, उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो CRPF में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं CRPF का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिया आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो CRPF करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी CRPF करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप CRPF में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है, ना केवल CRPF का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार

0: फॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर। आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है। आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन करता, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा।
0: शायद समझना
1: जी
0: मुश्किल है, और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत,
1: जी जी
0: बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियाँ मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से। और कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं, जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, कोई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
0: हाँ।
1: तो
0: हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी. और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीतमाला लेकर आते थे. और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे. क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी. तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई. और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए.
0: बिल्कुल जी. और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है. हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियाँ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा. खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने.
0: बिल्कुल.
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी.
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी. और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल. तो अपने बच्चों को ज़रूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
1: निसंदेह.
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की. एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है. निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर.
1: धन्यवाद. जय हिंद.
0: जय हिंद.

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का ही कार्य
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। यह रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। डीएफओ अविरूप सिन्हा के नेतृत्व में ससंगदा रेंज अंतर्गत भनगांव और नवागांव के ग्रामीणों को सहायता राशि प्रदान की गई। यह कार्यक्रम ससंगदा रेंज कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां हाथियों के हमले में घर टूटने, फसल बर्बाद होने और जान माल की क्षति झेलने वाले ग्रामीणों को मुखिया लिपि मुंडा की मौजूदगी में वन विभाग के अधिकारियों ने चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया। जमशेदपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्ती और टेंगो मोबाइल की निगरानी तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत टेलको थाना पुलिस ने बंद घर में चोरी की कोशिश कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पूछताछ में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की। खूंटी में ईद उल अजहा के मौके पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन नमाज अदा करने के बाद लोगों से गले मिले और खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन तथा एसपी ऋषभ गर्ग ने जिलेवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी समुदाय के सहयोग से ईद उल अजहा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इधर लोहरदगा जिले में भी मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद उल अजहा शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में निर्धारित समय पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा नमाज अदा की गई। लोहरदगा ईदगाह में पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने भी नमाज अदा की और लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:03 हुए हैं। कार्यक्रम युवाणी के लिए करें जरा सा इंतजार।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

नमस्कार, यह है आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए बनाया गया शो युवाणी। मैं हूं आपका दोस्त निलेश राज और आज हम तीन ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन शायद उन पर सोचना भूल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका नाम आज भी डिबेट्स में आता है, लेकिन जिनके देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, विनायक दामोदर सावरकर। इसके बाद हम एक ऐसे लत के बारे में बात करेंगे जिससे शायद हमारी जनरेशन का हर व्यक्ति जूझ रहा है। फिर हम एक ऐसे जिम्मेदारी के बारे में बात करेंगे जो आज के हर युवा के कंधों पर है। तो दोस्तों, एक नाम है जो कुछ लोगों के लिए तो हीरो है मगर कुछ के लिए कॉन्ट्रोवर्सी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग दो खेमों में बट जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें इतिहास ने वीर सावरकर का नाम दिया है। आज ही के दिन यानी 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक छोटे से गांव भागुर में उनका जन्म हुआ था। जब सावरकर सिर्फ 9 साल के थे, माँ राधाबाई का साया उनके सर से उठ गया और जब 12 साल के थे तब पिता दामोदर पंत भी चले गए, यानी 12 साल की उम्र में अनाथ। इसके बाद उनके बड़े भाई यानी गणेश सावरकर ने उन्हें संभाला, जो खुद आगे चलकर एक बड़े क्रांतिकारी बने। 1897 की बात है, सावरकर तब सिर्फ 14 साल के थे। उस साल बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल शुरू किया था। उस फेस्टिवल में सावरकर गए और वहां जो चिंगारी थी वो उनके अंदर आग बन गई। उसी साल चापेकर ब्रदर्स ने पुणे में दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मारी और उन्हें फांसी दी गई। सावरकर ने वो खबर सुनी और घर के देवी मंदिर में जाकर प्रतिज्ञा ली कि मैं भी आज़ादी के लिए क्रांति का रास्ता अपनाऊंगा जब तक सांस है। 14 साल का बच्चा देवी के सामने क्रांति की कसम, यह कोई फिल्म का सीन नहीं था, यह सच था। पढ़ाई के लिए वह पुणे के फर्गसन कॉलेज पहुंचे, जिसके साथ साथ अपने संगठन मित्र मेला में काम किया। शुरुआत में यह एक सांस्कृतिक और देशभक्त युवाओं का ग्रुप था मगर 1904 तक बड़ा होते होते अभिनव भारत सोसाइटी बना। यह सोसाइटी एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका मकसद था ब्रिटिश राज का अंत। पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स, लॉयर्स और लोकल लीडर्स इसके मेंबर्स थे और यह सोसाइटी स्पीचेस के साथ साथ एक्शंस में बिलीव करती थी। तिलक के मार्गदर्शन और सावरकर की रेप्यूटेशन बढ़ी और लंदन की स्कॉलरशिप मिली। सावरकर लंदन गए और वहाँ क्रांति की नींव रखी। इंडिया हाउस हॉस्टल को रिवॉल्यूशन का केंद्र रखते हुए लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई, जो हर हफ्ते मिलती और रिवॉल्यूशन की स्ट्रेटजीज बनाती। लंदन में रहते हुए उन्होंने 1857 की क्रांति पर किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अंग्रेजों ने इस क्रांति को सिपाही म्यूटनी यानी सिपाहियों की बगावत कहा था, जिस पर सावरकर ने कहा यह म्यूटनी नहीं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने पूरा रिसर्च किया, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, गवाहियां इकट्ठी की और अपनी किताब से 1857 को एक नया नजरिया दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह किताब प्रिंट होने से पहले ही बैन कर दी। लेकिन वह रुके नहीं, किताब नीदरलैंड और फ्रांस में छपी, सीक्रेटली इंडिया आई और कई लोग मानते हैं कि उसे महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों ने पढ़ी। लंदन में रहते हुए सावरकर ने ब्राउनिंग पिस्टल इंडिया में स्मगल करवाए। यह पिस्टल्स बुक्स में छुपाकर भेजी जाती थी। इन्हीं पिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए अनंत कन्हरे ने 1909 में नासिक के कलेक्टर A.M.T. जैक्सन की हत्या की। यह डायरेक्ट लिंक था सावरकर से और यही एविडेंस था जिस पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वांटेड घोषित किया। 1909 की बात है, सावरकर के साथी मदन लाल ढिंगरा ने लंदन में के एक बॉल में ब्रिटिश सरकार ऑफिशियल कर्जन वाइली को गोली मार दी। यह पहली बार था जब किसी इंडियन ने ब्रिटिश सॉइल पर

मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। सावरकर ने ढिंगरा के लिए ट्रिब्यूट लिखा और उन्हें शहीद कहा, जिससे लंदन में हंगामा मच गया। 1910 में सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और जहाज़ SS मोरिया में इंडिया भेज दिया गया। लेकिन जब जहाज़ फ्रांस के मार्सेली पोर्ट के पास पहुंची, तब सावरकर ने जहाज़ के एक छोटी सी खिड़की से समुद्र में छलांग लगा दी। तैरते हुए किनारे तक पहुंचे और फ्रेंच सॉइल में चिल्लाने लगे, आई एम अ पॉलिटिकल रिफ्यूज, आई सीक असाइलम। लेकिन ब्रिटिश गार्ड्स ने उन्हें इलीगली डिटेन किया और वापस जहाज पर ले गए। यह पूरा वाक्य इलीगल था, जिसकी वजह से यह केस इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सावरकर को वापस लाया गया और उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। सेलुलर जेल अंडमान, यानी काला पानी के नाम से जाना जाता है, मुख्य भारत से इतना दूर है कि बिना नाव के वापस आना लगभग असंभव है। इस जेल में कैदियों को कोकोनट ऑयल निकालने के लिए कोल्हू चलाना पड़ता था। रोज़ 30 पाउंड निकालना पड़ता था, वरना बेत की मार। एकांत कारावास, खाना बस इतना कि जान ना जाए। इस जेल में सावरकर को 50 साल की सजा मिली। इस कंडीशंस में इंसान का दिमाग टूट जाता है, मगर सावरकर ने वहाँ कविताएं लिखी। कागज़ कलम नहीं थे, नाखून से दीवारों पर लिखा और उसे याद किया। बाहर आकर उन कविताओं को पेपर में उतारा। 1921 में उन्होंने सेल्युलर जेल से रत्नागिरी ट्रांसफ़र किया गया और 1924 में रत्नागिरी से बाहर ना जाने और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना करने की शर्तों के साथ रिहाई मिली। रत्नागिरी में उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम किया। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उन्होंने मिलिटियराइज हिंदू का नारा दिया, इंडियंस को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर मिलिट्री ट्रेनिंग लेने को प्रेरित किया। मगर बात करें डिबेट और कॉन्ट्रोवर्सी की, तो क्रिटिक्स कहते हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार को मर्सी पिटीशन लिखे और कहा मुझे रिहा करो, और एक क्रांतिकारी को मर्सी नहीं मांगनी चाहिए। सपोर्टर कहते हैं यह एक टैक्टिकल मूव था। दोस्तों, यह डिबेट आज भी चलती है और शायद चलती रहेगी, लेकिन यह बात तय है वह एक देशभक्त थे। गांधी जी ने खुद कहा था सावरकर इज़ अ ब्रेव मैन। नेहरू ने कहा था ही इज़ अ पेट्रियट, दो आई डिफर फ्रॉम हिम। एक 14 साल के लड़के ने जो सपना देखा आज़ाद भारत का, उसके लिए सब दांव पर लगा दिया। माता पिता पहले से ही नहीं थे, भाई भी जेल में थे, खुद 50 साल की सज़ा, फिर भी वो झुके नहीं। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज का पहला सॉन्ग ये रहा।

फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं एक ऐसे चीज़ की जो शायद अभी भी आपके हाथों में है। हाँ, आपका फ़ोन, और उसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया ऐप्स। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ काम कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन आया, आपने अपना फ़ोन उठाया और एक नज़र में ही 2 घंटे निकल गए। सोशल मीडिया पर यह एडिक्शन कोई आम, बहुत ही आम बात है। यह एक साइलेंट एडिक्शन है जो डोपामिन का इस्तेमाल करता है। पहले हमें डोपामिन कुछ अच्छा करने से मिलता था, अच्छा खाने से मिलता था, मगर अब हर नोटिफिकेशन के साथ हमें मिल रहा है, हर स्क्रॉल के साथ मिल रहा है। यह एक ट्रैप है जो सोशल मीडिया कंपनीज डिज़ाइन करती हैं ताकि हम बार बार लगातार उसका इस्तेमाल करते रहें, स्क्रॉल करते रहें, एक और रील, एक और वीडियो, हमारा ब्रेन को लगते रहे कि रिवॉर्ड मिल रहा है। और इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड मैकेनिज्म। इसका असर ऐसा होता है कि हमारा पूरा जनरेशन का अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है। यानी अगर कोई चीज़ 8 सेकेंड से कम में हमें इंटरेस्टिंग ना लगे तो हम उसे छोड़ देते हैं। उसके साथ दूसरों से खुद को कंपेयर करना, हम ये भूल जाते हैं कि इंस्टाग्राम में जो है वह सच नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे कंपेयर करते हैं खुद से और देखते हैं कि लोगों की ट्रिप्स कितनी अच्छी हैं, उनके लुक्स कितने अच्छे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, और सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्या है, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और हम खुद में एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ सोशल मीडिया स्लीप डिप्रीवेशन का भी कारण बन गया है। रात को फ़ोन यूज़ करने से ब्लू लाइट मेलाटोनिन को ब्लॉक करती है, यानी नींद नहीं आती है, और नींद कम मतलब मूड ऑफ, फोकस कम, हेल्थ खराब, और सबसे ज़्यादा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर किसी की लाइफ एक्साइटिंग लगती है, हम घर बैठे फील करते हैं कि कुछ मिस हो रहा है और भी ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं। इस पूरे स्क्रॉल लूप से निकलने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, जैसे सोने से पहले 30 मिनट यूज़ नहीं करना है फ़ोन, और उठने के 30 मिनट बाद तक फ़ोन अवॉइड करना है, स्क्रीन टाइम फीचर यूज़ करना है, सोशल मीडिया में बिताया गया समय कम करना है, हर रोज़ 1 घंटा फ़ोन से दूरी बनाए रखनी है और अपने लिए समय निकालना है, और कुछ प्रोडक्टिव काम करना है जैसे किताबें पढ़ना, वॉक पर जाना या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। नोटिफिकेशन ऑफ रखें क्योंकि हर पिंग ज़रूरी नहीं है। जो टाइम हम सोशल मीडिया में बिताते हैं या वेस्ट करते हैं वो हम किसी अच्छे काम में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने समय को प्रोडक्टिवली

दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। अभी आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से सॉन्ग बेख्याली, बोल थे इरशाद कामिल के, स्वर था अरिजीत सिंह का, संगीतकार थे संचेत परंपरा। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पब्लिक प्लेस में हो और किसी ने कहीं कचरा फेंका और आपके मन में आया कि यह गलत हो रहा है, लेकिन कुछ बोला नहीं? आज हमें यही सोच बदलने की ज़रूरत है। जब 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ तो देश में एक वेव आई। लेकिन दोस्तों, स्वच्छ भारत सिर्फ एक कैंपेन नहीं रहना चाहिए, यह एक हैबिट बननी चाहिए, यह एक माइंडसेट बननी चाहिए और यह माइंडसेट हर युवा को अपनानी चाहिए। ज़रा सोचिए, इंडिया हर साल 62 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है, जिसका बड़ा हिस्सा प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होता। जमशेदपुर की ही बात करें तो सुबर्णरेखा और खरकई नदी की हालत हम सब जानते हैं। इसलिए हमें खुद में शुरुआत लानी पड़ेगी और कचरा डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा और खुले में रैपर ना फेंकने की आदत डालनी होगी। इसके साथ अपने आसपास लोगों को पोलाइटली एजुकेट करना पड़ेगा। अगर कोई पब्लिक प्लेस को गंदा कर रहा है तो उन्हें रोकना और डस्टबिन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे NSS या स्कूल्स और कॉलेजेस द्वारा ड्राइव्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भारत तब स्वच्छ बनेगा जब हम उसे स्वच्छ बनाएंगे, और चेंज लाने के लिए हमें खुद में चेंज लाना होगा। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, आज का तीसरा गीत यह रहा।

मलंग से टाइटल ट्रैक, जिसमें बोल दिया था कुणाल वर्मा और हर्ष लिम्बाचिया ने। स्वर था वेद शर्मा का और संगीतकार भी वेद शर्मा थे। तो आज का शो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। आज हमने बातें की अलग अलग चीज़ों के बारे में, एक ऐसे वीर के बारे में जिसने खुले समुद्र में छलांग लगाई, ऐसे एडिक्शन के बारे में जो हमारे हाथों में रहता है, और देश की स्वच्छता के बारे में। ये सारी बातें एक धागे से बंधी है और वह धागा हमसे। तो यह था आज का शो युवानी। मेरा नाम है निलेश राज, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कल कारखाने आप सुनेंगे, बस कुछ ही पलों में, इंतजार करिए थोड़ा।
1: कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है, शाम सिर्फ दिन के ढलने का नाम नहीं, ये इस बात का वादा है कि एक नई और खूबसूरत सुबह बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। हमारी जिंदगी में भी जब कभी थोड़ा अंधेरा या थकान महसूस हो तो समझ लीजिए कि वो एक नई शुरुआत की तैयारी है। बहरहाल हमारी भी तैयारी पूरी है आप सभी श्रोताओं के आज की शाम को जानकारियों और मनोरंजन से भरने की, और इसके साथ ही हमारी ओर से आप सभी श्रोताओं को त्याग समर्पण और खुशियों के पावन त्योहार बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा करे कि ये ईद आपकी जिंदगी में सुख शांति और तरक्की लेकर आए। हम एक बार फिर हाजिर है इसी मुबारकबाद और ढेरों दुआओं के साथ FM के 102.4 MHz पर कार्यक्रम कल कारखाने में। नमस्कार।

श्रोताओं, जब भी हम ईद उल जुहा यानी बकरीद पर्व की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहला लफ्ज आता है कुर्बानी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक जज्बा है। अपनी सबसे प्यारी चीज को दूसरों के लिए न्योछावर कर देना ही असल कुर्बानी है। बकरीद का ये पाक मौका हमें सिखाता है कि हम अपनी नफरत, अपने स्वार्थ और अपने अहंकार की कुर्बानी दें, देश प्रेम, आपसी भाईचारा और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा अपनाएं। हिंदुस्तान की पहचान भी तो यही है कि ईद की सेवैयां हो या दीपावली के दिए, हर त्योहार को हम मिलकर मनाएं और देश की एकता को सबसे ऊपर रखें।

श्रोताओं, आज एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। आज जब मैं ऑफिस के लिए अपने घर से निकली थी तो रास्ते में मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी। एक छोटा सा बच्चा नए कुर्ते पैजामे में सजी धजी गलियों से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा टिफिन था और वो दौड़कर सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग को अपने हाथों से उस टिफिन से निकालकर कुछ खिला रहा था। उस बच्चे की चेहरे की मुस्कान और बुजुर्ग के आंखों की चमक देखकर मेरे चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सच कहा जाए तो त्याग और समर्पण का ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि खुशियाँ तिजोरियों में रखने से नहीं बल्कि दिलों में बांटने से बढ़ती है। तो आज के इस पावन मौके पर चलिए हम सब मिलकर एक वादा करते हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे, आज अपने आसपास किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे, नफरतों को पीछे छोड़ेंगे और इंसानियत के प्यार के नए रास्ते बनाएंगे। तो आप सब सेवइयों की मिठास का लुत्फ उठाइए और जुड़े रहिए मेरे साथ और चलिए इस खूबसूरत माहौल को खुशनुमा बनाते हैं इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। तो लीजिए सुनिए FM के 102.4 MHz पर ये गाना।

रॉक स्टार। इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे जावेद अली, मोहित चौहान और एआर रहमान की आवाजों में। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन था एआर रहमान का। श्रोताओं, क्या आप भी अपनी दुकान, अपने हुनर या अपने किसी छोटे व्यवसाय को सिर्फ अपने मोहल्ले या शहर तक सीमित रख रहे हैं? आज का भारत डिजिटल भारत है, जहां अवसर असीमित है। अब वक्त आ गया है कि आप भी पारंपरिक तौर तरीकों से थोड़ा

0: आगे बढ़े और अपने व्यापार को दे डिजिटल पंख। सोचिए, एक छोटी सी चाय की दुकान से लेकर बड़े किराना स्टोर तक हर कोई एक QR कोड के जरिए डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकता है, तो आप पीछे क्यों रहें? डिजिटल होने का मतलब सिर्फ ऑनलाइन सामान बेचना नहीं है, डिजिटल भुगतान यानी कैश की झंझट खत्म। ग्राहक को दीजिए सुरक्षा और सहूलियत, सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान पाइए। सोशल मीडिया के जरिए किसी बड़े खर्च के अपने नए प्रोडक्ट्स और ऑफर्स की जानकारी सीधे ग्राहकों के मोबाइल तक पहुंचाएं। श्रोताओं, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और कई कल्याणकारी योजनाएं आज छोटे उद्यमियों को डिजिटल तौर पर सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। याद रखिए, जब आपका बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आता है तो आपकी दुकान 24 घंटे और 7वें दिन खुली रहती है। अब ग्राहक सिर्फ आपकी दुकान पर नहीं आता, बल्कि आपकी दुकान ग्राहक की जेब में पहुंच जाती है। तो देर किस बात की, आज ही स्मार्टफोन उठाइए, डिजिटल टूल्स को अपनाइए और अपने ग्राहकों का दायरा बढ़ाइए, अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। और श्रोताओं, बहरहाल कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही खास जानकारी के साथ। जी हाँ, आज आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं रेवती रमण उपाध्याय, धात्विकी उद्योग अतीत वर्तमान एवं भविष्य इस विषय पर। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: मानव सभ्यता का सीधा संबंध धातुओं से है। धातुओं के विकास के उपरांत मानव सभ्यता में निरंतर बदलाव आते गया। मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय से ही धातु और धातु संबंधित पदार्थों ने अपना विशिष्ट स्थान बना रखा है। मानव विज्ञानी एवं पुरातत्ववेत्ता भी मानव के विकास को विभिन्न चरणों यथा पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग में विभाजित कर दिए हैं। विश्व की संपूर्ण सभ्यताओं में धातुओं के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। करीब 6000 BC पुराने मिस्र में मिले लोहे के अवशेष को आकाशीय उल्का पिंडों के अवशेष होने का अनुमान लगाया जाता है। भारत में लौह संस्कृति 3000 वर्ष के लगभग पुरानी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले अवशेष बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम तांबा का उपयोग हुआ। मानव निर्मित लोहे का उत्पादन सर्वप्रथम एशिया माइनर वर्तमान के तुर्की में 1500 BC में हुआ। पुरातत्व विभाग को मिले प्रमाणों के आधार पर यह कहना गलत नहीं है कि भारत में लोहा बनाने की कला कश्मीर से कन्याकुमारी तक विकसित थी। भारतीय कारीगर लौह उद्योग में काफ़ी विकसित थे और यहाँ के धातु निर्मित सामग्रियों की गुणवत्ता अति उत्तम होने के कारण उनकी मांग विश्व में सभी जगह थी। कहा जाता है कि सिंध के राजा पोरस द्वारा विश्व विजयी सिकंदर महान को 40 पाउंड का धातु का भेंट एक बहुमूल्य भेंट था। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित अशोक लौह स्तंभ करीब 1600 वर्ष पुराना है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर और वजन 7 टन है। इसका 1600 वर्षों तक जंग रहित यथावत खड़ा रहना धात्विकी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के लिए एक आश्चर्य का विषय रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के धार के पास मांडू का लौह स्तंभ, विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के लौह स्तंभ तथा माउंट आबू स्थित लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय दक्षता के ज्वलंत नमूने हैं। धात्विकी उद्योग का संबंध धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कर्षण, परिष्करण और आकार पर प्रकार में परिवर्तन करना या धातुओं को आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाने से है। सामान्य विधि से प्राप्त उत्पाद में वांछित गुणवत्ता प्राप्त करना भी धात्विकी तकनीक के अंतर्गत आता है। धातु की उद्योग को सामान्यतः मेटलर्जिकल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। धातुओं के प्रकार के आधार पर धातु की उद्योग को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लौह उद्योग और लौह आधारित उद्योग तथा अलौह उद्योग। लौह और इस्पात उद्योग को आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अलौह आधारित उद्योगों में अल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, सीसा जिसे लेड भी कहा जाता है, सोना, चांदी, निकल, टाइटेनियम आदि आधारित उद्योग आते हैं। लोहा बनाने की कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। आज भी यह परंपरा कुछ जनजातियों में प्रचलित है। प्रारंभिक दिनों में लौह अयस्क को गलाने के लिए भट्टी में जमीन में कटोरानुमा गड्ढा खोदकर मिट्टी और पत्थर का उपयोग कर बनाया जाता था। इस प्रकार की भट्टी के उपयोग के प्रमाण करीब 400 BC पूर्व के हैं। लौह अयस्क और चारकोल को भट्टी में डालकर ताप से पिघला हुआ लोहा प्राप्त किया जाता था, जिसे ब्लूम कहा जाता था। इस विधि द्वारा अयस्क से लोहा का निष्कर्षण बहुत ही कम हो पाता था। इसका कारण चारकोल जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड और

0: लौह अयस्क के बीच प्रतिक्रिया का अपूर्ण होना था। भट्टी के ऊपर शाफ्ट लगाकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा लौह अयस्क में प्रतिक्रिया का समय बढ़ाया गया, जिससे आयरन ऑक्साइड के अधिक अवकरण से लोहा की उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सकी। समय अंतराल में ब्लोअर से भट्टी में हवा की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जाने लगी। इस तरह शाफ्ट ऊंचा कर तथा हवा की आपूर्ति बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ोतरी में कुछ हद तक सफलता मिली। अधिक ताप और प्रतिक्रिया दर बढ़ने से शुद्ध लोहा और स्लैग अलग अलग प्राप्त किए गए। संभवतः फाउंड्री तकनीक का यही उद्गम काल था। 15वीं सदी में लौह उत्पादकों द्वारा ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाने लगा। बिना बदलाव किए करीब 200 वर्षों तक लौह उत्पादन जारी रखा, लेकिन चारकोल के लिए हरे भरे वृक्षों को काटना काफ़ी महंगा और पर्यावरण संरक्षण के विपरीत था। इसके अतिरिक्त चारकोल को कम दबाव पर टूटकर महीन हो जाना शाफ्ट की ऊंचाई बढ़ाने में बाधक था। फलस्वरूप चारकोल के विकल्प की तलाश एक आवश्यकता बन गई और अंततः कोक को चारकोल के विकल्प के रूप में चुना गया और वांछित उत्पादकता बढ़ाने में कामयाबी मिली। भारत में फर्नेस द्वारा लौह उत्पादन का प्रयास मोटे और फर्व्यूअर द्वारा 1770 में वीरभूम में किया गया, किंतु वे इस कार्य में असफल रहे। 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल अधिकारी मार्शल हीथ को पोर्टोन हुआ गोवा में प्रथम लौह संयंत्र स्थापित करने का श्रेय जाता है, किंतु अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पाद होने के बावजूद अधिक उत्पादन लागत से कंपनी घाटे में चली गई और परिणाम स्वरूप इस संयंत्र को 1854 ईस्वी में बंद करना पड़ा। पुनः 1870 में कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स द्वारा लोहा उत्पादन का सफल प्रयास किया गया। 1856 में इंग्लैंड में हेनरी बेसेमर द्वारा हॉट मेटल में हवा से प्रतिक्रिया कराकर मेटल में कार्बन 2% से कम करने में कामयाबी प्राप्त हुई और स्टील का उत्पादन करने का प्रयास किया गया। इस विधि द्वारा व्यावसायिक तौर पर स्टील का उत्पादन 1861 ईस्वी में शुरू किया गया, किंतु मेटल से फॉस्फोरस को हटाने में कामयाबी नहीं मिली, जिससे स्टील की वांछित गुणवत्ता और मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं हो पाई। इस समस्या का समाधान 1878 में थॉमस द्वारा किया गया, जिसे बेसिक बेसेमर या थॉमस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। 1878-79 में विलियम सीमंस द्वारा विद्युत ऊर्जा के माध्यम से आयरन मेल्टिंग और परिष्करण की विधि विकसित की गई, इसे इलेक्ट्रिक स्टील मेकिंग के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में लौह उत्पादन हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों से प्रभावित होकर भारतीय उद्योगपति श्री जमशेद जी नसरवान जी टाटा, जेएन टाटा के नाम से भी जाना जाता है, आज देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों में टाटा स्टील के उत्पाद देश के विकास को अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने देश में औद्योगिकरण को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखकर कल कारखानों को स्थापित करने में मुख्य धातु की आधारित संयंत्र स्थापित किए। सेल के अंतर्गत बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, सलेम और बर्नपुर और भिलाई में बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए।
1: रेवती रमण उपाध्याय हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे धात्विकी उद्योग अतीत, वर्तमान एवं भविष्य इस विषय पर। श्रोताओं, जानकारियों के सिलसिले को हम आगे रखेंगे जारी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा संदेश।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि जब उम्र ढल जाएगी तब बुढ़ापे में सम्मान से जीने के लिए आय का साधन क्या होगा? केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसी चिंता को दूर करती है और आपके कल को सुरक्षित बनाती है। ये योजना देश के रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शा चालकों, निर्माण करने वाले श्रमिकों, घरेलू कामगारों, खेतीहर मजदूरों और सभी दिहाड़ी भाइयों बहनों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। अब आपको इस योजना की खास बातें बताते हैं। इस योजना के तहत आपको एक निश्चित पेंशन मिलती है। 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपको हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में मिलेगी। वहीं अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को 50% यानी 1500 रुपए मासिक की पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। अब बताते हैं कि इस योजना से कौन जुड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं आप आयकर दाता ना हो और ना ही पहले से ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस इस तरह की सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य हो। इसमें आपकी उम्र के हिसाब से 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का मासिक अंशदान तय होता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि जितना पैसा आप जमा करेंगे ठीक उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी आपकी पेंशन स्कीम में जमा करेगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए आप जन सेवा केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप खुद भी pmmandhan.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़े और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाए। बहरहाल श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे इस प्यारे से गाने के साथ। तो लीजिए सुनिए FM के 102.4 MHz पर ये प्यारा सा गाना।

एजेंट विनोद। इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत निर्देशन प्रीतम का। और श्रमिक श्रोताओं, इसी गाने के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक को यहीं संपन्न करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मंजू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। संध्या के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे।

नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: झारखंड के लोकगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे हो लोकगीत। कलाकार थे प्रेम सिंह पूर्ति व साथी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: उपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: पुर ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतनः दिवसः भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्णः आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः, पीवी सिंधु, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिल तनीसा क्रेष्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकल क्रीडायां षोडश चक्रे पीवी सिंधु जापान देशस्य रीको गुंजी 21:9, 21:12 इत्यंकांतरालेन पराजितवती। आगामी स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य एनके यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रांतरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वरीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदितर शार्नः स्पर्धायाः आरम्भे एव आहतो भूत्वा क्रीडांगणात् बहिर्जातः, येन लक्ष्यसेनः आशयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान् इति वार्ताः।
2: संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। कार्यक्रम कृषि जगत के लिए करें जरा सा इंतजार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सभी सुनने वालों को ईद उल अजहा की ढेरों मुबारकबाद। ईद का यह पाक त्यौहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां, अमन और सुकून लेकर आए। मैं हूं राजेश और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाइयों, आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे बागवानी और उद्यान के क्षेत्र में सरकारी सहयोग, इस विषय पर भेंटवार्ता। साथ ही आपसे होगी विभिन्न विषयों पर ढेर सारी बातें और आपके लिए होगा लोकगीत भी। तो करते हैं आगाज कुछ जरूरी बातों के साथ। किसान भाइयों, भारत विस्तार भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए

शुरू किया गया एक एआई संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। यह किसानों को खेती से जुड़ी सटीक जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी अपनी भाषा में सीधे फोन पर उपलब्ध कराता है। इसमें भारती नाम का एक एआई सहायक है जो आप सब से यानी किसानों से वॉइस चैट के जरिए बात करके मौसम, मिट्टी, फसलों की बीमारियों और कीटों का सटीक समाधान बताता है। स्मार्टफोन न होने पर किसान सीधे 155261 यानी 155-261 पर कॉल करके विशेषज्ञों और एआई से अपनी भाषा में सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं की जानकारी और आवेदन की स्थिति आप एक ही जगह से प्राप्त कर सकते हैं। देश भर की मंडियों में फसलों की रियल टाइम यानी ताज़ा भाव जानने की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। कृषक मित्रों, यदि आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके इस ऐप का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपनी खेती को फायदेमंद बना सकते हैं।

किसान भाइयों, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP की शुरुआत की है। इसके तहत हर मछुआरे और मछली पालक को एक विशेष ID प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही इसके द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना जैसी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। संस्थागत लोन प्राप्त करने और बीमा सुविधाओं तक पहुंच आसानी होती है। मछली उत्पादन के बाद नुकसान को कम करने और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर आय अर्जित करने में भी सहायता प्रदान की जाती है। तो किसान भाइयों, मत्स्य क्षेत्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अपनी डिजिटल पहचान और आधिकारिक डिजिटल ID पाने के लिए घर बैठे पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करा सकता है। NFDP ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। NFDP मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी और सहायता के लिए 1800 425 1660 पर आप संपर्क कर सकते हैं।

0: किसान भाइयों, किसानों और बागवानी करने वाले लोगों के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं होती है, लेकिन कई लोग इस योजनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। बागवानी और उद्यान के क्षेत्र में सरकारी सहयोग, इसी विषय पर आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं अनिमा लकड़ा।
1: कृषक मित्रों, कार्यक्रम कृषि जगत में आज हमारे साथ हैं जिला उद्यान पदाधिकारी अनिमा लकड़ा जी। ये हमें ये बताएंगी कि सरकार की ओर से बागवानी या हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। मैडम, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार।
1: मैडम, किसान भाइयों को ये जानकारी दीजिए कि सरकार की ओर से क्या फायदे दिए जाते हैं और क्या क्या योजनाएं हैं ताकि बागवानी या हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में को बढ़ावा मिल सके।
2: उद्यान विभाग में टोटल हमारा 15 स्कीम है
1: जी।
2: उद्यान में स्पेशली हम लोग फोकस करते हैं वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे और फ्लावर्स पे।
1: अच्छा।
2: ये तीनों से रिलेटेड सारा स्कीम हमें किसानों तक पहुंचाना रहता है। जैसे हम लोग सब्जी का बीज बांटते हैं, ओल हुआ, अदरक अच्छा। हुआ, किचन गार्डनिंग हो गया, फिर आपका पॉली हाउस हो गया, केला खेती को बढ़ावा देने के लिए केला का पौधा देते हैं, एग्जॉटिक फ्रूट्स में हमारा हो गया स्ट्रॉबेरी हो गया आपका, फूल का खेती बढ़ावा देने के लिए हम लोग गेंदा का फूल देते हैं,
1: अच्छा।
2: गेंदा का पौधा देते हैं। इसके साथ साथ प्रोटेक्टेड फार्मिंग को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉली हाउस देते हैं 75% अनुदान में, 25% किसान को उसमें जमा करना पड़ता है। हाँ, और पॉली हाउस में खेती करने का फायदा ये है कि जैसे कि पिछले साल जैसे आप लोग देखे कि बहुत ज़्यादा

0: देते हैं, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं किट रहित स्ट्रक्चर,
1: अच्छा
0: जो कि 168 स्क्वायर मीटर का होता है। अगर आप पटंदा बोडाम साइड जाइएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा हमने दिया है, वाइट कलर का
1: अच्छा
0: स्ट्रक्चर है ये।
1: हाँ
0: इसमें बिचड़ा उत्पादन बहुत अच्छा होता है।
1: अच्छा
0: ठंड के समय में किसान लोग जर्मिनेशन ट्री में बिचड़ा उत्पादन करते हैं, इसके अंदर 70 से 80 हज़ार बिचड़ा तैयार होता है।
1: जी
0: साथ साथ इसमें टमाटर का खेती बहुत अच्छा होता है, बैंगन बहुत अच्छा होता है, ब्रोकली बहुत अच्छा होता है
1: जी
0: इसमें। तो किसानों का बहुत डिमांड है। जब भी विभाग में ये स्कीम आती है, मतलब
1: जी
0: मेरे पास जितना मेरे पास टारगेट रहता है उससे बढ़ के मेरे पास आवेदन आ जाता है
1: अच्छा
0: किसानों
1: मतलब
0: का।
1: डिमांड बहुत है
0: डिमांड बहुत है
1: जी
0: और इस एरिया में ओल अदरक का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है।
1: जी
0: और साथ साथ हम लोग जरबेरा का खेती के लिए प्रेरित करते हैं, उसमें भी हम लोग ग्रीन शेड नेट देते हैं 75% अनुदान
1: जी
0: में।
1: हाँ
0: और इसमें है कि हम लोग जरबेरा का पौधा भी देते हैं, साथ
1: जी
0: में मल्चिंग ड्रिप सब कुछ लगा रहता है
1: अच्छा
0: इसमें। जो किसान फूल का खेती के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये 1,000 स्क्वायर मीटर का ये स्ट्रक्चर होता है। और इसके साथ साथ आपका सैम्पलिंग नर्सरी का भी एक योजना है। जैसे कि आप ठंड के दिनों में देखते हैं कि बहुत लोग बिचड़ा तैयार करते हैं,
1: जी
0: तो उसमें HDPE पाइप मिलता है, उसमें बिचड़ा तैयार करने के लिए सुरंगिनी छाया किट बना सकते हैं
1: अच्छा
0: उसमें। उसमें कुछ कोकोपिट मिलेगा, कुछ जर्मिनेशन ट्रे मिलेगा, कुछ खाद मिलेगा,
1: जी
0: कुछ उसमें बीज मिलेगा। तो उसमें किसान लोग उसमें बिचड़ा तैयार करके अपने खेतों में सब्जी को लगा सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा ये जो भी मैं स्कीम बताई ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी।
1: अच्छा सेंट्रल
0: इसमें
1: गवर्नमेंट में कुछ योगदान मिलता
0: हाँ, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में आपका ट्रेनिंग भी आता है,
1: है
0: एक
1: अच्छा
0: पार्ट 5 दिवसीय ट्रेनिंग। ये
1: जी
0: पिछले साल तो नहीं था लेकिन इस साल भी आने की संभावना है।
1: जी
0: वो हम लोग हर एक गांव में करवाते हैं, 30 या 35 का बैच में 5 डेज का ट्रेनिंग होता है। इसमें किसानों को
1: जी
0: जो भी जैविक खाद के बारे में हम लोग प्रेरित करते हैं उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। साथ साथ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को किस तरह और टेक्निकली किस तरह ग्रो करना है उसके
1: जी
0: बारे में हम लोग बताते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं मशरूम का भी।
1: अच्छा
0: मशरूम का भी कल्टीवेशन के लिए यहाँ से ट्रेनिंग मिलता है। और जो ट्रेनिंग लेते हैं वो किसान को, हर किसान को 30 बैग का हम लोग ऑयस्टर मशरूम हम लोग प्रोवाइड
1: अच्छा
0: करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष हम लोगों ने कम से कम 219 किसान को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था। और किसान लोगों ने बहुत अच्छा उनका मतलब इनकम हुआ। और दीदी लोग खुद अपने हाथों से, एक एक दीदी अपने लिए 30 30 बैग बनाई और खुद बना के अपने अपने घर लेके गई।
1: बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी आप लोग कुछ सहायता करते हैं
0: हाँ, हम लोग FPO से जोड़ देते हैं किसानों
1: जी
0: को ताकि
1: जी
0: वो लोग बाजार को उपलब्ध करा सके। इसके
1: जी
0: साथ साथ एक 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण होता है।
1: अच्छा
0: ये 25 दिन का होता है और इसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भारत सरकार से मिलता है, एग्रीकल्चर
1: अच्छा
0: स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से।
1: जी
0: और इसके लिए उम्र सीमा है 20 से 45 वर्ष। और इसमें फायदा ये है कि बहुत मतलब 25 दिन का ट्रेनिंग करके जो सर्टिफिकेट जिनको मिल जाए, अगर कहीं पर भी वैकेंसी आया माली का या तो फिर कभी विभाग में हम लोगों को माली का जरूरत पड़ता है, तो क्यों ना हम इन किसानों को जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं उनको
1: हाँ
0: हायर
1: मतलब फायदा
0: करें,
1: पहुंचता है उसका
0: फायदा पहुंचता है। और कहीं पर भी वैकेंसी भी आएगा तो उनके लिए एक वेटेज हो जाए
1: जी
0: कि
1: जी
0: 25 डेज में
1: ट्रेंड
0: ये
1: है
0: लोग
1: मतलब
0: ट्रेंड है। और सबसे बड़ी बात ये भारत सरकार से इनको सर्टिफिकेट मिल रहा है।
1: जी
0: और सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलता है, बाकायदा आपका 25 दिन का क्लास होने के बाद एग्जाम होता है ऑनलाइन
1: अच्छा अच्छा
0: एग्जाम।
1: एक प्रॉपर चैनल की तरह
0: हाँ, एग्जाम होने के बाद जो पास करेंगे उनको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मिलता है।
1: जी
0: तो ये इस चीज़ का फायदा है। बहुत किसान लोग सोचते हैं कि 25 दिन मतलब हमें रहना पड़ेगा, उतना
1: अच्छा
0: करना पड़ेगा, लेकिन मैं किसानों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी अपने तरफ से कि अगर आप अपने बच्चों को 10वीं तक पढ़ा रहे हैं, 12वीं तक पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन पढ़ा रहे हैं, कुछ सोच के पढ़ा रहे हैं,
1: हाँ
0: डिग्री का
1: हाँ जी जी
0: वैल्यू होता है, उसी तरह 25 दिन ये ना सोचे कि 25 दिन हम घर पे नहीं रह पाएंगे। आपको रहना खाना सब कुछ फ्री है, सब कुछ सरकार दे रही है, उस
1: आपको समय
0: प्रैक्टिकल
1: देना है
0: आपको बस समय देना है, प्रैक्टिकल
1: जी
0: वर्क है उसमें।
1: जी
0: ये तो हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट का
1: जी
0: स्कीम।
1: जी
0: जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें हम लोग मल्चिंग देते हैं, फिर हो गया आपका एंटी बर्ड नेट देते हैं, उसके साथ साथ वर्मी बेड देते हैं,
1: जी
0: ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने 80 किसान को नोएडा भेजा था, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी।
1: जी
0: 40 किसान वहाँ 5 डेज का ट्रेनिंग किए थे और 40 किसान को एक्सपोजर विजिट हुआ था। वो लोग आसपास की जगह में जाके ट्रेनिंग सेंटर, बहुत सारे रिसर्च सेंटर में जाके बहुत कुछ नया कुछ सीख के आए हैं। बहुत लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ग्राफ्टिंग, हाइड्रोपोनिक्स जो कभी देखे नहीं थे कि पानी में भी खेती होता
1: खेती
0: है,
1: होता है
0: वो
1: जी
0: चीज़ भी देख के आए हैं, वहाँ पर कुछ नया सीख के आए हैं। तो प्रेरित करते हैं किसान को कि जो लोग इच्छुक है बाहर जाके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो लोग ज़रूर ये स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। और और विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं।

0: सिर्फ उद्यान से नहीं, आप लोग कृषि विभाग से भी आप लोग फायदा ले सकते हैं, और किसान सिर्फ खेती पे निर्भर ना करें, वो लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, मतलब खेती के साथ साथ वो लोग मत्स्य पालन भी करें, पशुपालन का भी फायदा उठाए, डेयरी भी करें, कि अगर आपका फसल किसी भी वजह से खराब हो जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन से, तो आपके पास सेकेंड अल्टरनेटिव सोर्स रहेगा आपके पास करने के लिए।
1: आपने काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में बताया, किसान बहुत सरल होते हैं, जानकारी होने के बावजूद भी वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां लाभ लेने के लिए उन्हें पहुंचना चाहिए। किस तरह से किसान कांटेक्ट करे आपसे और कैसे वो इन सब का लाभ उठा सके?
0: हमारे ब्लॉक में उद्यान मित्र है, हर एक ब्लॉक में
2: जी।
0: उद्यान मित्र से आप संपर्क कर सकते हैं, या ATM से आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उद्यान विभाग से भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं 7091769431। आप लोग कभी भी संपर्क करके योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी इस वित्तीय वर्ष का योजना अभी आया नहीं है, जो पिछला वित्तीय वर्ष का था वही संभावित योजना ही इस बार की आएगा, बस कुछ टारगेट बढ़ के आएगा। तो आप इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि जब स्कीम आएगा तब मैं आवेदन फॉर्म भरूंगी, आप पहले से भी एडवांस में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही योजना आता है यहाँ मेरे पास ओल अदरक के लिए मतलब जितना टारगेट है उससे डबल ट्रिपल मेरे पास आवेदन आ जाता है। तो मैं कृषक लोग को यही जागरूक करना चाहूँगी कि आप लोग जितना जल्दी हो सके स्कीम का फ़ायदा उठाएं और कुछ अच्छा करें।
1: तो किसान भाइयों, अभी आपने मैडम अनिमा से सुना कि कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें सरकार की कई योजनाएं हैं जिससे सरकार आप लोगों को फ़ायदा दे रही है, बस ज़रूरत है थोड़ी सी जागरूक होने की। आप जागरूक हों और मैडम ने जो कहा उसे यदि आप सुने होंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बागवानी और उद्यान के क्षेत्र में सरकारी सहयोग, इसी विषय पर आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का अर्थी अनिमा लकड़ा।

किसान भाइयों, खरीफ फसलों का मौसम आ रहा है। इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले से कुछ तैयारी करके रखें। खरीफ की फसलों की सफलता, खेती और बम्पर पैदावार के लिए मानसून से पहले गहरी जुताई करें, जैविक खाद का उपयोग करें, प्रमाणित बीजों का चुनाव करके बीजोपचार करें। मानसून पूर्व खेतों की जुताई करके कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें। इससे तेज धूप के कारण हानिकारक कीड़े और फंगस नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी की परीक्षण अवश्य कराएं। खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए नालियां पहले से ही बना लें तो ज़्यादा अच्छा। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक या ट्राइकोडर्मा से उपचारित जरूर करें, ताकि शुरुआती रोगों और कीटों से बचाव हो सके। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो अभी से नर्सरी तैयार करने का काम शुरू कर दें। बीजों को बोने से पहले नमक के पानी से उपचारित करके स्वस्थ बीजों का ही चुनाव करें।

किसान भाइयों, गर्मी की चिलचिलाती धूप और लू से किसानों और उनके पशुओं दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। किसानों को चिलचिलाती धूप में काम करने से बचना चाहिए और पशुओं को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए छायादार स्थानों व पर्याप्त पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। खेतों में काम करने का समय बदलें, सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद ही खेतों में काम करें। भीषण गर्मी में काम करते समय शरीर में पानी की कमी न होने दें। हर थोड़ी देर में पानी, नींबू पानी, मट्ठा या ORS का घोल पीते रहें। धूप से बचने के लिए हमेशा सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें। काम के दौरान सिर पर गमछा या टोपी जरूर लगाएं और आंखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे का उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा। इन सब के बावजूद भी यदि तबीयत खराब हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पशुओं की जहां तक बात है, पशुओं को

दिन में 3 से 4 बार सादा और ठंडा पानी पिलाएं। उन्हें कभी भी सीधा गर्म पानी न पीने दें। छाया और हवा से पशुओं को पूरी तरह से ढके रहें। पशुओं को टीन की छत के नीचे न रखें। छतों पर पराली डालकर या खस की टट्टियां लगाकर पानी का छिड़काव करें। बेहतरीन परिणाम के लिए पंखे और कूलर का उपयोग आप कर सकते हैं। पशुओं को हरा चारा और संतुलित आहार रात या सुबह सुबह जल्दी दें। नमक और मिनरल मिक्सर का इस्तेमाल नियमित रूप से करें। किसान भाइयों, आइए अब रुख करते हैं मनोरंजन की ओर। सुनते हैं कुर्मारी लोकगीत। कलाकार हैं अंजलि महतो व साथी।

किसान भाइयों, आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत, कलाकार थी अंजलि महतो व साथी। अब चलते चलते आपको ये बता दें कि समाज और ग्राम स्तर पर सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो गाँव के विकास, हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा और ज़रूरतमंदों को सहायता पहुँचाने में सीधे तौर पर कार्य करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें पंचायत में उचित प्रतिनिधित्व दिलाना भी पंचायत, ग्राम पंचायत की भूमिका होती है। पेंशन, छात्रवृत्ति और आवास योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाना भी ग्राम पंचायत का काम है। गाँव के स्तर पर छोटे छोटे सामाजिक और पारिवारिक विवादों को आपसी सहमति और ग्राम कचहरी के माध्यम से सुलझाना, ताकि सभी को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। सामाजिक सुरक्षा की यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत गांव के हर वयस्क मजदूर को साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना, जिसमें लोगों की आर्थिक सुरक्षा मिले। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी करना, ताकि हर गरीब परिवार को समय पर सही मात्रा में खाद्यान्न मिल सके। ये सारे काम ग्राम पंचायत करते हैं और ग्राम पंचायत की इन सारी कामों में अहम भूमिका होती है।

0: इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत का ये सफर बस यहीं तक, आपको छोड़े जाते हैं इस संदेश के साथ।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। संध्या के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे संध्या 7:00 प्रादेशिक समाचार 7:10 पर होगा जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत 9 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाने के प्रयास तेज। आईआईटी आईएसएम धनबाद में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच 22 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा राशि भी किया गया वितरण। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपने सिफारिशों से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से हुए रवाना। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य परिचालनशील राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने यह बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: आईआईटी आईएसएम धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलिजेंट और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा

0: बेहतर जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी समझ विकसित करने में सहायक साबित होंगे।
1: स्टेम एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे स्कूल में इसकी पढ़ाई थी, लेकिन ये ISMIIT ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट और BCCL का भी इसमें कुछ अल्प योगदान रहा। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी स्कूलों में जाकर मैंने उनको ये भी थोड़ा सा इनसे आग्रह किया।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। DFO अविरूप सिंह सिन्हा ने के नेतृत्व में संसगदा रेंज अंतर्गत भनगांव और नवागांव के ग्रामीणों को सहायता राशि प्रदान की गई। यह कार्यक्रम ससंगदा रेंज कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां हाथियों के हमले में घर टूटने, फसल बर्बाद होने और जानमाल की क्षति झेलने वाले ग्रामीणों को मुखिया लिपि मुंडा की मौजूदगी में वन विभाग के अधिकारियों ने चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया। वन विभाग के अनुसार हाथी प्रभावित ग्रामीणों को कुल 22,53,397 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। यह रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर में मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है। आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में आज ईद उल अजहा शांतिपूर्वक मनाया गया है। इस मौके पर राज्य के विभिन्न मस्जिद और ईदगाह में नमाज की विशेष व्यवस्था की गई। ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन भी सतर्क रहा और शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मनाने को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बकरीद पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए अटूट विश्वास, त्याग और समर्पण की याद में मनाई जाती है। इस दौरान राजधानी रांची समेत राज्य भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिखी प्रशासन की तत्परता। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के कदम टोली में एक वर्ग विशेष द्वारा गांव के एक परिवार के महिला, पुरुष और 3 साल के मासूम बच्चे के साथ मारपीट की घटना को भारतीय जनता पार्टी में निंदनीय बताया है। घटना के 4 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होने पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
2: कहते तो है कि अगुआ सरकार, लेकिन इस अगुआ सरकार में जेल में कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, यहाँ के लोगों के हित में और यहाँ के लोगों के साथ ये नहीं चाहती है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रहे। इस तरह क्यों होता है इस झारखंड प्रदेश में और इस सरकार में?
0: जमशेदपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्ती और टेंगू मोबाइल की निगरानी तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत टेलको थाना पुलिस ने बंद घर में चोरी की कोशिश कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस की को सूचना मिली थी कि LFS स्कूल के सामने एक बंद क्वार्टर में चोरी का प्रयास कर रहे 2 युवकों को पकड़ा गया है। पूछताछ में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की।
3: इनके पास से कुल 15 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी जैसा जो पदार्थ है, जिसकी भी पुष्टि हो जाएगी। एक ताला काटने का सामान जो हम बता रहे थे वैसा। नगद राशि 58,130 रुपए बरामद हुए हैं। एक जो स्प्लेंडर बाइक जो घर के बाहर खड़ी थी वो भी हमने सीज किया है।
0: माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य और विपक्ष के नेता पिनराई विजयन के प्रति प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की वाम दलों ने आलोचना की है। इस संबंध में वाम दलों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी की कथित रूप से हो रहे दुरुपयोग के खिलाफ वाम दल 29 मई से 1 जून तक राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। पार्टी की ओर से कहा गया है कि पिनराई विजयन के घर पर की गई छापेमारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। माकपा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया गया है, पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाया जा रहा है। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के बटसारा में कुटी काटने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। आज सुबह बटसारा गांव के एक खलिहान में ट्रैक्टर में लगी कुटी मशीन से पुआल काटने के दौरान उनका हाथ अंदर मशीन में चला गया और अधिक खून बह जाने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पड़वा थाना की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से रवाना हुए हैं। रिया कुमारी, अमित गोप और अभिषेक कुमार दिल्ली और लखनऊ में आयोजित ट्रायल में भाग लेकर भारतीय कुश्ती टीम में जगह बनाने का प्रयास करेंगे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ ने इसे राज्य के खेल इतिहास के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए खिलाड़ियों की मेहनत और खेल विभाग के सहयोग की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत 9 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाने के प्रयास तेज। आईआईटी आईएसएम धनबाद में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच 22 लाख रूपये से अधिक की मुआवजा राशि का किया गया वितरण। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और राज्य के 3 पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से हुए रवाना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: दुमका जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी में भी लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था से लोग परेशान हैं। आए दिन लोग जगह जगह एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं। लोग सड़क जाम कर रहे हैं और बिजली विभाग एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। पिछले दिनों सांसद नलिन सोरेन के मोहल्ले के लोगों ने स्टेशन रोड को जाम किया और गुस्सा जताया। जाम में सांसद भी फंसे। लोगों ने सांसद को अपनी समस्याएं सुनाई।
2: हम लोग जो है लाइन के लिए त्रस्त हैं। एक बूंद पानी टंकी में नहीं चल रहा है। यहाँ का सिस्टम फेल है। कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जोड़ता है उड़ जाता है। लोड नहीं ले रहा है। इसमें जो है और ट्रांसफार्मर बढ़ाना होगा।
1: ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि
3: इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा। पानी का समस्या, पानी तो आ ही नहीं रहा है। सप्लाई पानी भी बंद है इधर।
1: दुमका जिले में कम पानी में वैज्ञानिक तरीके से खरीफ की खेती करने के लिए किसानों को तकनीकी रूप से तैयार किया जा रहा है। इसके तहत कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से कन्वेंशन सेंटर में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया। कर्मशाला में जिले भर से पहुंचे किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों के बीच खरीफ खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। जिला कृषि पदाधिकारी निशा कुल्लू ने बताया कि इस वर्ष मानसून के दौरान 20-30% तक कम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए किसानों को वैकल्पिक खेती अपनाने की सलाह दी गई है। किसानों को ऊंचे क्षेत्र में धान की खेती कम करने और नीचे और गड्ढे वाले क्षेत्र में धान की फसल लगाने की सलाह दी गई है। वहीं वैकल्पिक खेती के रूप में मड़ुआ, तिलहन और दलहन की खेती अधिक से अधिक करने की भी सलाह दी गई है।
4: ऐसे कि अपलैंड में हम लोग ऐसे धान लगाते हैं, तो इस बार हम लोग धान को डिस्कार्ड करें। इसके अलावा हम लोग उसके जगह पर लगनी फसल ली और मड़ुआ की खेती करें, मिलेट्स लगाए, क्योंकि इसमें कम पानी की आवश्यकता होगी। डीजल भी अगर हम बोलते हैं उसको उसके साथ कर सकते।
1: उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष मानसून में कम वर्षा होने की संभावना को देखते हुए किसानों को उन तकनीकों को अपनाना चाहिए जिसके माध्यम से कम वर्षा में भी अच्छी से अच्छी खेती की जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
5: एलिनो मतलब एलिनो आता है, 150 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग आने वाला है। एलिनो आता है तो यहाँ इंडिया में मानसून बहुत कम हो जाता है। लेकिन इंडिया में उसमें
1: दुमका सहित पूरे संताल परगना में गर्मी बढ़ने के साथ ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ी हैं। मई माह में 26 दिनों में पूरे संताल परगना में सर्पदंश के 151 मामले सामने आए, जिनमें 6 की मौत हुई। सबसे अधिक घटनाएं दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा की हैं। दुमका जिले में 26 दिनों में सर्पदंश की 31 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सांप काटने पर तुरंत व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराने और झाड़ फूंक करने से बचने की सलाह दी है। आरके नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:16 हुए हैं। लीजिए सुनिए बांग्ला कार्यक्रम।

आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
2: आप सभी को आज धर्मेंद्र और
3: आलोक का नमस्कार।
2: नमस्कार आलोक। और आलोक, खेलों की बात करें तो बहुत सारी खेल गतिविधियां दुनिया भर में चल रही हैं, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभागिता लगातार दिखाई दे रही है, लगातार प्रदर्शन भी निखर कर सामने आ रहा है। तो चंद्रालोक, आज शुरुआत करते हैं शूटिंग से। 21 साल की यंग शूटर ईशा सिंह ने एकाग्रता वाले इस गेम में मजबूत भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ISSF वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में न सिर्फ स्वर्ण पदक अपने नाम किया बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम अंकित करवा लिया। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इस प्रतियोगिता में ईशा ने दुनिया के दिग्गज निशानेबाजों के बीच से निकलकर इतिहास रच दिया। इस भारतीय निशानेबाज ने फाइनल में 50 में से 43 अंक हासिल किए। ये स्कोर सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में नया विश्व रिकॉर्ड है। ईशा सिंह का ये शूटिंग पदक ISSF वर्ल्ड कप 2026 सीजन में भारत का राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में पहला व्यक्तिगत पदक भी है। इस स्वर्ण पदक के साथ ईशा ने दिसंबर में इटली के रोम में होने वाले सीजन एंडिंग ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया। अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद ईशा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
4: Munich meant a lot to me. I think everyone in this sport knows the kind of competition that goes on here. I mean, at least in pistol, it's very, very tough. I'm even getting into the top 8 is quite tight. And I really badly wanted to win this one because it's my third time here and last time I didn't even make it to the final, though it was the same score for the top 8. But I think I'm very grateful. I loved the experience. I didn't really expect this good shooting to happen, but I focused on myself, my process, and I did my best to execute what I was doing in my training. And yeah, I think I would tell that to anyone who wants to perform their best. And at this one series, I think I was just getting ready to hear the ready command to lower, and I could see my left hand shaking really bad. I was like, oh, okay, I'm a little too much. So I tried to like just breathing and like calm myself down, but I had a lot of nerves. But that's the thing, I think in our sport, you can't escape that. You have to face it and just embrace that feeling, because that is what we call experience, and you should be grateful that you're feeling it, and you can note down if you ever felt like you have to work on something. So
2: जर्मनी की टोरेन विनिंग कैंप ने 50 में से 38 निशाने के साथ रजत पदक जीता, जबकि बुल्गारिया की मिरोस्लावा मिनवेवा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पेरिस 2024 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यांग जी क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर रहने के बावजूद फाइनल में 5वें स्थान पर रही। वहीं भारत के स्टार निशानेबाज मनु भाकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गयी। इसी स्पर्धा में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीतने वाली राही सरनोबत भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गयी। भारत की अर्शदीप कौर और तेजस्विनी ने रैंकिंग पॉइंट्स ओनली कैटेगरी में हिस्सा लिया। अर्शदीप 44वें और तेजस्विनी 51वें स्थान पर रहीं। इस तरह राइफल पिस्टल और शॉटगन विश्व कप स्पर्धाओं में यह इस सीजन भारत का तीसरा पदक रहा। इससे पहले स्पेन के ग्रेनेडा में आयोजित राइफल पिस्टल विश्व कप में मुकेश नेलावल्ली और पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित शॉटगन विश्व कप में विवान कपूर और नीरू ढांडा ने मिक्स टीम ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस साल की शुरुआत में शाह सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक भी जीता था। और इसी प्रतियोगिता से अभी अभी ये खबर आ रही है कि साक्षी पाडेकर ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 635.1 का स्कोर किया, जबकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की चैंपियन इला वेनिल क्लारिवन 19वें और आर्या बोर से 63वें स्थान पर रही। अब उम्मीद करते हैं इस इवेंट में भी एक पदक की। और शूटिंग के बाद अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि आईपीएल के मुकाबले शबाब पर हैं। और कल जो मुकाबला हुआ है, अगर हम बात करते हैं कल के क्वालिफायर मुकाबले की, तो जो मुकाबला खेला गया उसमें एक बार फिर से बल्ला चमका है वैभव सूर्यवंशी का। चलते हैं आईपीएल की तरफ। जैसे सूर्यवंशी की सुनामी कहें, तूफान कहें या फिर भूचाल, आपका जो दिल करे कहिए, लेकिन सच यही है कि चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में 15 साल के बिहारी बालक वैभव के बवंडर के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का सब कुछ तबाह हो गया। क्रिकेट जगत की इस युवा सनसनी के सामने बेहद अनुभवी कप्तान पैट कमिंस लाचार दिखे तो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज बेबस। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और वैभव अपने शहर समस्तीपुर से होकर गुजरने वाली उस अल्लड़ कोसी नदी की तरह हर बाधा को तोड़कर अपनी रौ में बहे जा रहे हैं। कोसी के वेग और तेज वाले मिजाज का एहसास उनकी पूरी पारी के दौरान दिखा। आईपीएल 2026 के इस एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स के साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद का भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। हार का मतलब आईपीएल के इस एडिशन में सफर की समाप्ति थी। ऐसे में टॉस हैदराबाद के कप्तान कमिंस ने जीता और बिना वक्त गवाए गेंदबाजी का फैसला ले लिया। टॉस हारने की निराशा राजस्थान के कप्तान रियान पराग के चेहरे पर भी दिखी, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच पर वे भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। लेकिन रियान की निराशा कुछ ही पल में आशा में बदल गई, क्योंकि शुरुआती कुछ गेंदों की खामोशी के बाद वैभव नाम का सूर्य पूरी प्रखरता के साथ अपने बल्ले की चमक बिखेरने लगा था। वैभव के बल्ले से रन निकलते गए और रनों का पहाड़ खड़ा होता रहा। इस दौरान कई रिकॉर्ड सहज अंदाज में बनते चले गए, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन जब 29 गेंदों में 97 रन पर जाकर वैभव की पारी थमी तो क्रिकेट का चाहने वाला हर चेहरा निराश था। प्रफुल्ल लिंगे की गेंद पर जब रविचंद्रन स्मरण ने उनका कैच लपका तो पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। वैभव के पैर जैसे मन मन भर भारी हो गए। वो मैदान से बाहर जाने के लिए जैसे तैयार ही नहीं थे। लेकिन जो भी हो, एक बार फिर उनकी बेखौफ पारी ने राजस्थान की मजबूत बुनियाद रख दी। सूर्यवंशी ने हमेशा की तरह कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं था और वे अपने अंदाज में खेलते चले गए।
5: ऐसा मैंने दिमाग में नहीं डाल के सोच रहा था, बट वो शॉट मैंने फील्डर को देखकर खेला, इस वजह से वो मिस हुआ शॉट। अगर मैं कटमैन पे खेले जाता तो वो क्लियर हो जाता, बट मैं ऐसा सामने मारने गया इसलिए वजह से मिस हुआ।
2: उनके बाद ध्रुव जुरेल की 21 गेंदों में 50 रन की पारी ने राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवर के बाद 8 विकेट पर 243 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की। आलम ये रहा कि सनराइजर्स के दूसरे गेंदबाजों की बात तो छोड़िए, कप्तान पैट कमिंस ने अपने 4 ओवर में बिना किसी सफलता के 64 रन खर्च कर दिए

आईपीएल इतिहास का ये सबसे महंगा स्पेल रहा। बल्लेबाजों के बाद बारी थी गेंदबाजों की। अनुभवी जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर तूफानी अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेजकर शानदार आगाज किया। इस झटके और बड़े स्कोर के दबाव से सनराइजर्स हैदराबाद फिर कभी उभर नहीं पाई। हालांकि तीसरे नंबर पर ईशान किशन के 11 गेंदों पर 33 रन और फिर नीतीश रेड्डी और सलील अरोड़ा की छोटी छोटी पारियों ने बुझते चिराग में जैसी थोड़ी देर के लिए उष्मा का संचार किया, लेकिन पूरी टीम 19 ओवर और 2 गेंद में 196 रन पर सिमट गई। इस तरह 47 रनों की बड़ी जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने शानदार अंदाज में क्वालिफायर 2 में जगह बना ली। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए कल उसकी टक्कर गुजरात टाइटंस से इसी मैदान पर होगी। न्यू चंडीगढ़ का यह मैदान राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद खास रहा है। इस मैदान पर उसने अब तक 4 मैच खेले हैं और चारों में उसे जीत मिली है। ऐसे में आरसीबी के हाथों क्वालिफायर 1 में बड़ी शिकस्त खाने वाली गुजरात टाइटंस अब राजस्थान से किस तरह मुकाबला करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां छोटे कद के वैभव के बल्ले की विशाल चमक राजस्थान का हौसला 7वें आसमान पर कर रहा होगा, वहीं गुजरात को अपने बिखरे हौसले को समेट कर और सहेज कर मैदान पर उतरना होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि दूसरा क्वालिफायर भी शानदार होगा। कि ये एलिमिनेटर मुकाबला था और चूंकि इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पराजित हो गई तो वो अब आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है और दूसरा क्वालिफायर मैच जैसा हमने आपको बताया कि कल खेला जाएगा। और अब जानते हैं कि क्या कुछ रिकॉर्ड कल अपनी पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने बनाए।

0: वर्षीय सूर्यवंशी के बल्ले का वैभव क्रिकेट की दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। बिहार की मिट्टी में जन्मे और तपे इस बल्लेबाज ने कल 29 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों वाली 97 रन की तूफानी पारी में न सिर्फ कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए बल्कि कई नई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पहले तो वैभव ने 16 गेंद में 50 पूरी करके आईपीएल प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के सुरेश रैना के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने पांचवी बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ा। पावर प्ले के दौरान वैभव ने 8 छक्के जड़े और पहले 6 ओवर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने सनत जयसूर्या, जॉस बटलर और जॉनी बेरेस्टो को पीछे छोड़ा। वैभव ने मुल्लपुर में पावर प्ले में अपना 5वां 50 प्लस का स्कोर बनाया। वे आईपीएल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। वैभव ने एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 12 छक्कों की पारी के दौरान 7वां सिक्स लगाते ही गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वैभव के छक्कों की संख्या 65 तक पहुंच गई है। वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ पावर प्ले में 23 गेंद पर 71 रन बनाए। वे आईपीएल की एक सीजन में पावर प्ले में सबसे ज्यादा 490 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वैभव के रिकॉर्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप जान लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी कोच जेम्स फ्रैंकलिन का उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना है।
1: Then start playing around with it and then start to cause the bowlers to have to go to other places, which tend to then go back into his strength. So, yeah, just another amazing innings from an amazing talent.
0: वैभव के रिकॉर्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ अपनी पारी में 12 छक्के जड़े। ये चौथी बार है जब उन्होंने एक ही पारी में 10 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल की बराबरी की जिन्होंने 4 बार ये कारनामा किया है। वैभव 12 सिक्स की इस पारी के साथ ही आईपीएल प्लेऑफ की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पहले रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम पर था जिन्होंने 2023 प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर 10 छक्के लगाए थे। वैभव आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। मैच में 12 छक्के लगाते हुए उन्होंने इस साल हैदराबाद के खिलाफ लगाए 12 सिक्स के अपने रिकॉर्ड की ही बराबरी की। वैभव ने 97 रन की पारी के साथ इस सीजन अब तक 680 रन बना लिए हैं। वे आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं। पहले ये रिकॉर्ड उनके ही साथी यशस्वी जायसवाल के नाम था जिन्होंने 2023 में राजस्थान के लिए 625 रन बनाए थे। वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ 334.48 के स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। वे आईपीएल में 300 या उससे अधिक के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 3 बार 50 प्लस का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने निकोलस पूरन और जैक फ्रेजर मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि बल्लों से रनों की आग उगलने वाले सूर्यवंशी ने अब तक कुल 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर लिया है। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा से टीम के उनके सीनियर साथी ध्रुव जुरेल भी अभिभूत दिखे।
1: Because he practices a lot and he always back himself. That's what he does every time when he go out and play. So the best thing about himself is like he backs himself and he doesn't have that shadow of doubt that I'm not able to do it.
0: अब इंतजार कल के मैच का है। उम्मीद है कि वैभव के बल्ले की धार इस मैच में भी दिखेगी और कई और रिकॉर्ड भी टूटेंगे। आईपीएल की अब बात महिला क्रिकेट की, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच T20 मैच की सीरीज आज से शुरू हो रही है। बताइए आलोक, क्या कुछ है इस श्रृंखला के बारे में जानकारी?
2: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहला मैच जेम्स फोर्ड के एम्बेसडर क्रूज लाइन ग्राउंड में खेला जाएगा, जिसके बाद दूसरा मैच ब्रिस्टल के सीट यूनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा मैच टॉन्टन के कूपर एसोसिएशन काउंटी ग्राउंड में होना है। आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रैंकिंग तीसरी है, जबकि मेजबान इंग्लैंड की रैंकिंग दूसरी है। हरमनप्रीत कौर टीम का नेतृत्व जारी रखेगी, क्योंकि भारत अगले महीने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से पहले अपने संयोजनों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। महिला टी20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारी पिछले साल दिसंबर में घरेलू मैदान पर श्रीलंका पर 5-0 की क्लीन स्वीप साथ हुई। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से जीत हासिल कर इतिहास रचा, जो एक दशक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वहां पहली द्विपक्षीय श्रृंखला जीत थी। हालांकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम को शर्मिंदगी झेलना पड़ी, जहां भारत को निराशाजनक तरीके से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड सीरीज भारत को 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच से पहले निरंतरता हासिल करने और आदर्श संयोजन पर समझौता करने का एक अंतिम अवसर देगी। रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौर, अंदती रेड्डी के तेज गेंदबाजी लाइनअप का नेतृत्व करने की उम्मीद है, जबकि टीम प्रबंधन महिला प्रीमियर लीग में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ नई खिलाड़ी नंदनी शर्मा को मौका दे सकती है। साउथ अफ्रीका सीरीज मिस करने के बाद राधा यादव और यशिका भटकर टीम में वापस आई है। भारत की पहली पसंद विकेटकीपर यशिका ACL इंजरी से बाहर थी, जबकि राधा की वापसी से स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती आएगी, जिसमें दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल शामिल है। इसी बीच इंग्लैंड चार्ली डीन की कप्तानी में टी20 विश्व कप चैंपियन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीत के बाद मैदान पे उतरेगी। रेगुलर कप्तान नेट सेवर ब्रंट फिडली की चोट से उभर रही है। कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच 35 बार अभी तक मुकाबले हुए, जिसमें इंग्लैंड ने 24 बार जीता है, जबकि भारत को 11 मैच में सफलता हासिल की है। दोनों टीमें आखिरी बार जुलाई 2025 में मिली थी, जब भारत ने इंग्लैंड को अपनी पहली बायलेटरल महिला टी20 सीरीज में 3-2 से हरा करके इतिहास रचा था। सीरीज की बात की जाए, आज का पहला मैच खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार रात के 11 बजे से यह मैच शुरू होगा, जबकि इसका दूसरा मैच 30 मई को खेला जाएगा और जो भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे शुरू होगा, जबकि अंतिम मुकाबला 2 जून को खेला जाएगा और ये मैच भारतीय समय अनुसार रात के 11 बजे शुरू होगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस श्रृंखला और विश्व कप को लेकर के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा।
3: सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द वर्ल्ड कप एंड गुड दैट यू नो वी आर गेटिंग दिस कंडीशंस बिफोर द वर्ल्ड कप सो दैट वी कैन गेट यूज्ड टू इट एंड प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग एंड वी ऑल लव प्लेइंग इन इंग्लैंड कंडीशंस एंड अगेंस्ट इंग्लैंड सो होपफुली यू नो वी विल गेट everything from this series what we need and this series will definitely give us a lot of confidence going ahead to the T20 World Cup. We love playing in England conditions because of the weather and conditions here because you know we always played under tough conditions but England conditions are quite easy for us so I think the only challenge is the pitches because we are not used to these kind of pitches but I think this series will give us little bit confidence and experience before the T20 World Cup.
0: और अब बात शतरंज की। शतरंज के बोर्ड से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है, जहां नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा ने तीसरे राउंड में बड़ा उलटफेर करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। प्रज्ञानंदा ने 2024 में पहली बार मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल मुकाबले में हराया था। अब इस भारतीय खिलाड़ी ने फिर से वही कारनामा कर दिया है। इस बार भी उन्होंने क्लासिन को नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में ही मात दी है। तीसरे राउंड के मुकाबले से पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर के सिर्फ 1 पॉइंट थे। क्लासिकल शतरंज में प्रज्ञानंद की ये जो है कार्लसन पर बहुत जबरदस्त जीत है, क्योंकि कार्लसन को इतनी करारी शिकस्त मिलेगी इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की होगी। इस बाजी में 20 साल के आर प्रज्ञानंदा ने सफेद मोरों से खेलते हुए 5 बार के विश्व चैंपियन को 46 चालों में हरा दिया। 44वीं चाल पर एक बड़ी गलती करने के बाद कार्लसन ज्यादा समय नहीं टिक पाए और 2 चाल बाद ही हार मान ली। इस जीत के बाद आर प्रज्ञानंदा के 4.5 अंक हो गए हैं। वो स्टैंडिंग में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले राउंड में उन्होंने अमेरिका के वेस्ली सो को आर्मगेडन में हराया था और 1.5 अंक अर्जित किए थे, लेकिन दूसरे राउंड में अलीरजा फिरोजा से हार गए थे। अपनी इस जीत के बाद प्रज्ञानंदा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं।
1: I think I was just lucky. Yeah, I just missed the 2 C6 area. So I should be lost, I think, if not for that. I don't think he needs to take on D6. So, yeah, at some point I was like, I lost control and I was not happy. I was also low on time, but yeah, some of things turned around for me.
0: चेस इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार मैग्नस कार्लसन का अपने घरेलू टूर्नामेंट में प्रदर्शन अभी तक निराशाजनक रहा है। उन्हें पहले राउंड में फ्रांस के अलीरजा फिरोजा के खिलाफ हार मिली थी। इसके बाद उन्होंने विंसेंट कीमर को टाई ब्रेकर में हराया। अब चेन्नई के खिलाड़ी ने तीसरे राउंड के मुकाबले में उन्हें शिकस्त दी। 3 राउंड के बाद 1.5 अंक लेकर वह 6 खिलाड़ियों के स्टैंडिंग में सबसे नीचे छठे स्थान पर पिछड़ गए हैं। 2013 में वे नॉर्वे चेस की शुरुआत हुई थी। अभी तक 13 क्लासिकल टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने 7 में जीत हासिल की है। आखिरी 14 की अगर बात करते हैं तो वो शानदार रहा है उनके लिए. पिछले 7 साल में वे 6 बार विजेता रहे हैं. वहीं डी गुकेश और अलीरेजा फिरोजा के बीच क्लासिकल बाजी ड्रॉ रही, लेकिन आर्मागेडन में अलीरेजा ने जीत हासिल कर अतिरिक्त अंक हासिल किए. हम आपको बता दें कि क्लासिकल में सीधी जीत पर 3 अंक मिलते हैं, जबकि आर्मागेडन बाजी में जीतने पर 1.5 अंक हासिल होते हैं. पुरुषों की वर्तमान स्टैंडिंग के अनुसार फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा ने अपनी बढ़त कायम रखी है और 7.5 अंकों के साथ पहले नंबर पर हैं. भारत के प्रज्ञानंदा के 4.5 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर हैं. अमेरिका के वेस्ली सो 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं. वर्तमान विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश 3.5 अंक लेकर चौथे और विंसेंट कीमर 3 अंक लेकर कार्लसन से ऊपर 5वें नंबर पर हैं. उधर महिला वर्ग में तीसरे राउंड में भारतीय खिलाड़ियों में कोनोरू हम्पी का मुकाबला अन्ना मुजीचुक के साथ क्लासिकल बाजी में ड्रॉ रहा. हालांकि आर्मागेडन में मुजीचुक ने जीत हासिल कर अतिरिक्त अंक जुटाए. दिव्या देशमुख की क्लासिकल बाजी शीर्ष पर चल रही बिबिसारा आसुबाएवा के साथ ड्रॉ रही, लेकिन आर्मागेडन में दिव्या ने जीत हासिल कर अतिरिक्त अंक हासिल किए. तीसरे राउंड में महिलाओं की स्टैंडिंग के अनुसार बिबिसारा 5.5 अंक के साथ टॉप पर हैं. उनके साथ आर्मागेडन में जीत के बाद दिव्या देशमुख बिबिसारा के नजदीक 4.5 अंक पर पहुंच गई हैं और दूसरे स्थान पर हैं. अन्ना मुजीचुक 4 अंक के साथ तीसरे, झू जिनेर इतने ही अंक लेकर चौथे, झू वेंजुन 3 अंक के साथ 5वें और भारत की बेहद अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी 2 अंक के साथ 6ठे यानी अंतिम स्थान पर हैं. अब चौथे राउंड में पुरुष वर्ग में डी गुकेश का सामना मैग्नस कार्लसन से, विंसेंट कीमर का मुकाबला प्रज्ञानंदा से और वेस्ली सो की बाजी अलीरेजा फिरोजा के साथ होगी. महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी बनाम झू जिनेर, बिबिसारा आसुबाएवा का मुकाबला झू वेंजुन से और दिव्या देशमुख की टक्कर अन्ना मुजीचुक से होगी. तो ये बात थी शतरंज की. अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है फुटबॉल के मैदान पर. भारत ने कौन सा मुकाबला खेला रहा है बता रहे हमारे साथी आलोक.
2: भारत लंदन के दवेली में 2026 यूनिटी कप के सेमीफाइनल में 0-2 से हार गया. भारतीय टीम अब शनिवार को तीसरे स्थान के प्लेऑफ में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी, जबकि जमैका पिछले साल के फाइनल की तरह नाइजीरिया से भिड़ेगी. 2002 के बाद ब्रिटिश धरती पर भारत का यह पहला मैच था. 8वें मिनट में कॉटन क्लार्क के शुरुआती गोल और 78वें मिनट में कोडम डिक्सन के अकेले किए गए गोल के जमैका को फाइनल में पहुंचा दिया. जिम्बाब्वे को पहले दिन सेमीफाइनल में नाइजीरिया से हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में कई पर्सनल मोमेंट देखने को मिला. नोफेल पियन और रिकी सोमांग ने सीनियर नेशनल टीम में जमैका के लिए डेब्यू किया, जबकि एडमर्ड लार्डी रांगन को भारत के लिए पहली बार खेलने का मौका मिला. 8वें मिनट में जमैका के एक तेज काउंटर ने भारत के गोल को चीर दिया, जिससे गुरप्रीत सिंह संधू एक टाइट एंगल से तेजी से बचाव करना पड़ा. फीफा रैंकिंग में 71वें नंबर पे मौजूद जमैका ने कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करना जारी रखा और विंग से भारतीय डिफेंस को भेदा, बड़ी आसानी से स्टेप का फायदा उठाया. 17वें मिनट में डिक्सन ने गोल करके लगभग बढ़त दुगुना कर दी थी, लेकिन सिंधु डटे रहे और हिम्मत से रोक करके भारत को ज्यादा गोल से बचाने लिया. जैसे जैसे हाफ टाइम आगे बढ़ा, इंडिया धीरे धीरे संभलने लगा. कुछ अच्छी पासिंग और कंट्रोल पोजीशन पल दिखे, जिससे आखिरी तीसरे हिस्से में ब्लू टाइगर्स की क्रिएटिविटी की कमी दिखी. रियान विल्सन और चांगते लारिरिंगा जूझते रहे और भारत जमैका के गोलकीपर कोनियन वायल्स क्लार्क को बिना ज्यादा आजमाए हाफ टाइम तक मैच पहुंच गई. लेकिन ब्रेक के बाद भारत ज्यादा जोश और भरोसे के साथ मैदान पर उतरा. जमैका के डिफेंस और गोलकीपर की गलती के बाद 53वें मिनट में ब्लू टाइगर्स को लगभग लाइफलाइन मिल गई थी. रोशन ने एक लूज बॉल पकड़ी और हाफ टाइम में स्ट्राइकर लारिरिंगा की जगह रहीम अली को गोल के पास दिया. हालांकि ऑफसाइड हो गई, जिससे चांगटे का खाली नेट में गया और गोल नहीं गिना गया. हालांकि इस मौके ने मैच का मोमेंटम बदल दिया. भारत अचानक जानदार दिखने लगा. खालिद जमील के खिलाड़ियों ने मैच जीतने की कोशिश की, पिच पर ऊपर की और दबाव बनाया, जमैका के डिफेंस को और भी ज्यादा इरादों से परखा. आखिरकार उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए, जिससे जमैका को मुकाबले में अपने सबसे अच्छे दौर के दौरान बैकफुट पर जाना पड़ा. लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि भारत वापसी कर लेगा, तभी डिक्सन ने एक जादुई पल दिखाया, जिससे उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया. चार्ल्टन एथलेटिक्स के विंगर ने जो होम स्टेडियम में खेल रहे थे, 78वें मिनट में एरिया के किनारे से पास बॉल दी और शानदार फुटबॉल के साथ डिफेंडरों को छका दिया. कंधे पर एक तेज शॉट मारकर उन्होंने जगह बनाई और फिर आकाश मिश्रा के पैरों के बीच से एक नीचा शॉट मारकर सिंधु के पार निचले कोने में पहुंचा दिया.
0: फुटबॉल से ही जुड़ी एक और खबर है. भारतीय अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम को एफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर के ग्रुप बी में उज्बेकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश के साथ रखा गया है. टूर्नामेंट के मैच 25 अगस्त से 6 सितंबर 2026 के बीच ताशकंद, उज्बेकिस्तान में सेंट्रलाइज्ड प्रारूप में खेले जाएंगे. भारतीय टीम, जिसे ब्लू कोट्स भी कहा जाता है, 2006 के बाद से इस टूर्नामेंट में पहली बार क्वालिफाई करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. क्वालिफिकेशन चरण में 32 टीमों को 8 समूहों में विभाजित किया गया है. क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी 8 ग्रुपों के विजेता और 7 सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। उज्बेकिस्तान को ग्रुप बी का मेजबान बनाया गया है। भारतीय टीम अपनी रैंकिंग के आधार पर पॉट 3 में थी और ये जो मुकाबले होंगे बड़े दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं। फुटबॉल की बात अब चल लेते हैं हॉकी के मैदान की तरफ। खबर हॉकी से यह है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल करते हुए 4 मुकाबलों की दोस्ताना श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर दिया। फोर्थ हॉकी स्टेडियम में भारतीय टीम ने आखिरी क्वार्टर में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच को 1-1 से ड्रॉ कराया, जिसके बाद शूट आउट में उसने 4-2 से जीत हासिल की। मुकाबले के 10वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने ओलिविया टॉन्स के गोल की बदौलत बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन विरोधी टीम पर लगातार दबाव बना रही भारतीय टीम के लिए 46वें मिनट में शीला चानो पुखरम्बम ने आखिरी क्वार्टर में गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। शूट आउट में मेहमान टीम 4-2 से विजयी रही, जिसमें नवनीत कौर, इशिका चौधरी, अन्नू और ऋतुजा दादासु पिसाल ने गोल किए। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबलों की फ्रेंडली सीरीज मंगलवार को एक कड़े मुकाबले के साथ शुरू हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में 2-1 से करीबी जीत हासिल की थी। सीरीज का तीसरा मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे कल इसी स्टेडियम पर खेला जाएगा। और आलोक, अब और आपके पास क्या जानकारी है वो बताइए।
2: जी, जानकारी ये है कि 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो चल रही है उससे एक अच्छी खबर आई। भारत के निपाम ने जो एशियन एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप चल रही है उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है 100 मीटर में। उन्होंने आज अंडर 20 नेशनल रिकॉर्ड होल्डर जो है दीपाम ने एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में फाइनल में 11.62 सेकंड का टाइम निकाल करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले दीपाम ने हाल में ही जूनियर फेडरेशन कप में 11.53 सेकंड के साथ जूनियर अंडर 20 रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा बात करें तो उसी प्रतियोगिता की, तो भारत के आशुवेद प्रताप सिंह और अमन प्रताप सिंह 7वें और 8वें स्थान पर है क्रमशः। ये बात कर रहे हैं हम हैमर थ्रो की। प्रताप सिंह का सरफेस प्रदर्शन रहा 64.34 मीटर का, जबकि अमन का सरफेस रहा 63.40 मीटर का।
0: जी, और बैडमिंटन की बात तो हमने की नहीं, तो वो बात भी कर लेते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन से हर वर्ग में भारत के लिए कुछ अच्छी खबर है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन जारी है और वो सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स वर्ग के मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-9, 21-12 से आसानी से हराया और अगले दौर में जगह बना ली। सिंधु के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्हें अंतिम 8 दौर में कल कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त आन सी यंग का सामना करना पड़ेगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन को भी जीत मिली है। प्री क्वार्टर फाइनल में उनके प्रतिद्वंदी विश्व में दूसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के कुलनावत वितित सारन के मैदान छोड़ देने से लक्ष्य को क्वार्टर फाइनल में जगह मिली। घायल कुलनावत ने जब मैदान छोड़ा उस समय पहले गेम में लक्ष्य 2-0 से आगे थे। एक अन्य पुरुष सिंगल्स मैच में एचएस प्रणय को हार का सामना करना पड़ा है, उन्हें सिंगापुर के लो केन येव ने पराजित किया है। हम आपको बता दें कि प्रणय ने पिछले दौर में विश्व के 5वीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर उलटफेर किया था।

0: चौथी वरीयता प्राप्त मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे के ली जी हुई और यांग पो सुआन की जोड़ी को 21-15, 11-21, 21-18 से हराया। सात्विक चिराग का सामना अब मलेशिया के खाई जिंग कांग और अरुण ताई की जोड़ी से होगा। ध्रुव कपिला और तनिषा कास्ट्रो की भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। इस जोड़ी ने जापान के युता वातानावे और माया तायुची को 8-21, 21-17, 21-16 से मात दी। तो बैडमिंटन के कोर्ट से ये अच्छी खबर है आलोक
1: जी। अब टेनिस की बात करते हैं, फ्रेंच ओपन चल रहा है। भारतीय दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो मिश्रित युगल में भारत की योकी भांबरी और उनके रूसी जोड़ीदार अलेक्जेंड्रा पोनोवा का मुकाबला आज डच और यूक्रेनी जोड़ी डेविस पेल और लुयादमिला किचेनोव से होगा। वही भारत के मेंस डबल्स में बात किया जाए तो अनिरुद्ध चंद्रशेखर और उनके जापानी जोड़ीदार टाकारू योजोजुकी का मुकाबला आज मार्कस विलिस और जेकब पॉल के साथ था। ये दोनों ये जोड़ी स्विस और ब्रिटेन की है, उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। स्कोर रहा 3-6, 7-6 और 7-6 का।
0: और वियतनाम के डा नैंग में भारतीय पुरुषों की फ्रीस्टाइल टीम अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में निर्विवाद चैंपियन बनकर उभरी, जबकि देश ने अलग अलग वर्ग में कुल 27 पदक जीतकर अपना अभियान खत्म किया। फ्रीस्टाइल टीम ने किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे ताकतवर देशों को पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। ये दोनों देश दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत ने फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन वर्ग में 11 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। चैंपियनशिप जीतने वाली फ्रीस्टाइल टीम ने 9 पदक के साथ अपना अभियान खत्म किया, जिसमें 4 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं आलोक कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो मुझे यानी धर्मेंद्र और मेरे सहयोगी
1: आलोक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 8:18 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: काबिल फिल्म का ये गीत आपने सुना जुबिन नौटियाल की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था राजेश रोशन ने और गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
0: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,

रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना रूप कुमार राठौड़ की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था हरेश जयराज ने और गीत लिखा था समीर ने। इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। संध्या के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या और 9 बजे होगा न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, इस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
2: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
2: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है, या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान जैसा आपने कहा बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
2: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं, क्या ये शरीर के लिहाज से, स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
2: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए, हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकलें घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाए, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाएं तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाएं। अगर धूप है उस समय तो छतरी का लें, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सकें।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है,

0: हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है, किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के लोग ले सकते हैं। लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खास तौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी, और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है। लेकिन गर्मी में ना जाए, और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जा करके डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ जाता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें, तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटे नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं, तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोताओं इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Insights. This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
3: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, We will be discussing about the uniform civil

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

केदारनाथ इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अजीज कौर की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था अमित त्रिवेदी ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने।

सैटेलाइट शंकर, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह और आकांक्षा शर्मा की आवाजों में। इसके गीतकार और संगीतकार थे मिथुन।

नमस्ते इंग्लैंड, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना आतिफ असलम और आकांक्षा भंडारी की आवाज़ों में। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत निर्देशन किया था मन्नन शाह ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

फिल्म का नाम था युद्रा। आवाजें थी विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की। संगीत निर्देशन किया था शंकर एहसान लॉय ने और शब्द रचना की थी जावेद अख्तर ने।

फिल्म हेलीकॉप्टर इला, इस फिल्म का गीत आपने सुना। पालोमी की आवाज में संगीतकार थे डैनियल बी जॉर्ज और गीतकार स्वानंद किरकिरे।

अमावस इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाजों में। संगीतबद्ध किया था इसे संजीव दर्शन ने और गीत लिखा था संदीप नाथ ने। और इसी गीत के साथ श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का ख्याल गायन, राग है बिहाग।

आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का ख्याल गायन, राग था बिहाग। और आइए अब सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये ठुमरी।

मन मोहन श्याम रस है, मन मोहन

Mana mana lama dah.

आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का ठुमरी गायन, राग था खमाज। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।

0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।